里方言为自己的语言，比哈尔邦位于印度中东部，按总面积这是印度的第13大邦级，而按人口来说是第3最大的邦级。

印度的里广播电台，听众朋友们，请收听 Bihar 邦的 Bhojpuri 民间歌曲。

भरद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीक है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्रीराम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की। उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्रीराम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख मुनिवर के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्रीराम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का

भेद और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस का अयोध्या कांड खंड 43। अब समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य यूपीआई इत्यस्य वैश्विक विस्ताराय आह्वानं कृतवान्। सः वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रम् आहूतवान् यत् तत् भारतस्य स्वदेशीयेन उपभोक्तृदेय जालेन यूपीआई इत्यनेन सह अधिकानां देशानां देय प्रणाली संयोजये तथा भारतीय प्रवासी जनानां धनप्रेषण व्ययस्य न्यूनीकरणे साहाय्यं कुर्यात्। प्रधानमंत्री एतद् ह्यः मुंबई नगरे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य सप्तम संस्करणं संबोधयन् उक्तवान्। प्रधानमंत्री यूपीआई इत्येतत् वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विजेतारम् इति वर्णयन् उक्तवान् यत् गते मासे यूपीआई माध्यमेन 400,000,000,000,000,000 धन विनिमया अभिलेखिता। सः सबलं प्रतिपादितवान् यत् धन विनिमय व्ययस्य न्यूनीकरणाय वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणालीषु वैश्विक सहकारः नूतनं लक्ष्यं भवितव्यम्।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक

ओले वकील मंत्री प्रधान श्रीलंका अरुणा जयशेखरा दान कॉमिसारिस तिंगी इंडिया उन्तुक श्रीलंका संतोष झा सलामा कुंजुंगानिया मंत्री प्रधान आकन मंगड़ा कन पंबीचान देंगन पारा पमिंपिन श्रीलंका मंगे नई बरबागी ईसु उन्तुक सेमाकिन नंपरक्वात हुबुंगान बेलतल दिव्यदांग विदांग यंग सालिंग मंगुंतुंग अंतरमासुक कमित्रन मारी तिमदान प्रधान यंग कुआत कॉमिसारिस तिंगी इंडिया उन्तुक बांग्लादेश दिनेश त्रिवेदी मलाकू कन कुंजुंगान का हरमातन कपाडा प्रेसिडेंट बांग्लादेश मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर दी बनाभन धाका सलामा पर तेमा तरसबूत कदवा पिहाक मनेकान कन पेंटिंग नियमम पर कुआत हुबुंगान बिलतल देमी का पेंटिंग अन बरसामा मास्यारा कत कदवा नगेरा दालम सब उंगहान दी मीडिया सोशल कॉमिसी तिंगी इंडिया दी ढाका मनियाम पाई कान बाबा डिस्कुसी मरेका मनेगास कन इका तन मन दालम अंतारा इंडिया दान बांग्लादेश यंग दी बांगुन आतस दासर सजारा बरसामा हुबुंगान बुदाया यंग एरा दान हुबुंगान अंतर मास्यारा कत सऊदी अरब तेला मनदू कलोमपोक बरसन जाता होती यांग दिदुकुंग ईरान दी यमन मुलाकुगान एस्कलासी बरबहाया सतेला सरांकायन सरांगान यांग मनार्गेत कन फासिलिटास दान इंस्टालासी सेक्टर एनर्जी दी कराजान तरसबूत कोलियासी पमेंपिन सऊदी अरब यांग मंदुकुंग पमरिंता यमन यांग दिया कोई सेचरा इंटरनेशनल मंगाता कन बाबा सरांगान सरांगान तरसबूत मनीबाप कन का बाकरान दी बाबारपा फासिलिटास मनियाक दान लोकासी उतलितास दी विलाया सलातान सऊदी अरब यांग मंगाकिबात कन सदिकितनिया तुजू पुलु तिगा ओरंग तरलुका दान मंदोरंग पंघंतियन ऑपरेशनल सेमेंतरा दी फास्तितास फास्तितास यांग तरदांपक जुरु बिचरा कोलासी पिमिंपिन सऊदी अरब तुर्की अल मली की मंगाता कन बहवा सरांगन तर सबूत मरूपा कन पलंगन तर हदब का दौलतान सऊदी अरब दलम सबुआ उंगहान दी मीडिया सोशियल दिया मंगाता कन बहवा कमांडो पासुकन गाबुंगन कोलियासी आकन मंगाम्बिल लंका लंका ऑपरेशनल यांग दीपरलुकान उन्तुक मंचेगा कोलंपुक तरसबुत मंगापी सुम्बर सुम्बर अंचामान दान मन मुनियदियकान बहाया तरसबुत समयंतारा ईतु होती मंगाता कान बाबा मड़े का तेला मनार्गेत कान बाबरापा लोकासी दी सऊदी अरब तरमासुक बंदारा इंटरनेशनल अबा मंकालान उदारा किंग खालिद दान फासिदस मिलिक परुसान मिनिया राक्षसा मिलिक नगेरा अरमाको दी बा अबा दान दिजान दुआ बिलास नगेरा तरमासुक इंग्रिस कनाडा दान फ्रांसिस मन गाता कान बहवा मरेका आकन मनजातु कान सांगसी तरहादा परदादांगान देंगान परमुखी मान इजराइल दी तेपी भारत मनियसुल दुगा आन पनिंकात कान सरांगान ओले पमुखी इजराइल तरहादब देसा देसा पालेस्तीना दी विलाया पंडुडू कान तरसबू डेनमार्क फिनलैंडिया इजलैंडिया आयरलैंडिया नॉर्वे पोलांडिया पुर्तगाल स्पानियोल दान स्वेदिया जुगा बरेंचाना मम्बातासी परदादांगन देंगन पर मुख्यमान तरसबूत पारा मंत्री लुआन नगेरी दाड़ी दुआ बिलास नगेर दालम पण्यातन बरसामा मंगाता कन बाबा तिंडा कन पमरिंता इजराइल दी तेपी भारत मरुसाक कमुकीमान तरवजूदिया सोलूसी दुआ नगेरा मंत्री लुआन नगेरी इंग्रिस एद मिली बांध सात बर बिचारा दी पार्लियामेंट मंगाता कन बाबा पमरिंता इंग्रिस आकन मंबर लाकू कन लारंगन इम्पोर्ट तरहादा बारंग बारंग दारी पर मुकीमान इलीगल दी विलाया पंडुडू कान दालम लंका यांग दी कोऑर्डिनेशनसी कान देंगन नगेरा नगेरा लाइन प्रेसिडेंट रूसिया व्लादिमीर पुतिन मनियाकिन कान प्रेसिडेंट अमेरिका सरिका डोनाल्ड ट्रंप दालम पर्चा कापान तेलपोन बाबा मॉस्को तीडा ममिली की नियात अग्रेसिव तरहादप यूरोपा सतेला पारा पजाबत यूरोपा मनियाला कान मॉस्को आतस कंपनी साबोतास दी विलाया अमेरिका समेंतारा ईतु प्रेसिडेंट उक्राइना व्लादिमीर जेलेंस्की मंगाता कान बाबा उत्तुसान अमेरिका असरिका त्यांग मंगुंजुंगी कीव तेला मनियांपाई कन बाबा रापा गागासान यांग सांगत बाइक दान बरमानफत उन्तुक मंगाहिरी परांग रूसिया यांग तेला बर लांगसुंग सलामा एम्पत सतेंगा ताउन सराया मनम बाह कन बाबा दिया बर हारप दापत बरतेमु देंगन ट्रंप दालम वक्तु दुआ मिंगू नामुन रूसिया तेताप बरते कट उन्तुक मंचापाई तुजुआन मिलितरनिया दान याकिन बाबा अमेरिका हाँपिर ममनांग कन परांग काता जुरू बिचारा क्रिमनेम देमेत्रोवेस्को नामुन पारा पंगामत उक्राइना दान भारत मनियाकिनी बाबा मॉस्को बलुम मांपू मंचापाई का माजुआन सिग्निफिकेंट दी गारिस देपान परांग तरसबूत मासी दापत बरलांगसुंग सलामा बरताहुन ताहुन कतिका रूसिया मम्बांगुन कम्बाली पासुकान्या दान इंदुस्ती परतहानान्या काता वाकिल मंत्री परतहानान अमेरिका सरिकात अडगे कॉलबी उतुसान अमेरिका सरिकात जारेत कुस्नर दान स्टीव विटकॉफ मंगुंजुंगी मॉस्को

लागू नॉन फिलमदा नाहिरनिया सारिया चारा एसो खारिन्या सोडारा सोडारा अंडा बीसा मंग किरीम कन लापुरान दान सारन अंडा मलालोई पौ से लताओ ईमेल हारब दी चातत ईमेल कामी सबगई बरिकुत ए आई आर तितिक इंडोनेशिया 373@gmail.com कामी उलांगी ए आई आर तितिक इंडोनेशिया 373@gmail.com लापुरान अंडा तेतब दी तुंगु दी मेजा तुगास कामी दी स्टूडियो दी सीनी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए

0: फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become

0: कम प्रोग्रेस।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
2: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिवीजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75-80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
4: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड,

0: मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबलेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबलेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आतंक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज यूपीआई इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ इंडियाज फिनटेक सक्सेस स्टोरी। Defense Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever FinTech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
4: Bharat ki FinTech story adbhut rahi hai. Aur iska ek bada champion hai hamara UPI. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
3: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system, the Prime Minister said that UPI is now live in 11 countries, turning what was once unimaginable into an everyday reality for international payments.
4: 21st century's second quarter.

0: semi-final. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Saira. Russia says BRICS can bridge Iran-UAE gap, writes Hindustan Times. The Tribune writes Modi-Putin bilateral on September 11, Sukhoi 57 sale, tech transfer on table. The newspapers have widely covered PM Modi inaugurating infrastructure projects. The Asian Age headlines, PM unveiled 35,000 crore projects. The Tribune writes, India-China holds second LAC flag meet in 2 days. After the tragic incident of building collapse in Satyaniketan area in Delhi, the matter has reached the Supreme Court. The Pioneer writes, safety of PGs in Delhi and a Supreme Court lens. The Hindu writes, Supreme Court mulls plan India's safety regulations for student hostels. And finally, Dinin Express writes, 60 years of Star Trek, fans pass down not only shared language but values too, adding that Star Trek functions as connective tissue between fans past and present. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shakun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semi-finals of US Open in New York. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीआई भारत की फिनटेक कामयाबी की एक गैर मुतनाज़े काबिले जिक्र दास्तान है। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। इम्कान है कि 12 से 21 सितंबर के दरमियान जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने से पहले वस्ती, जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। और टेनिस में न्यूयॉर्क में आर्याना सवालिनका और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिनटेक में भारत की नुमाया कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा है कि मुल्क का रुकूम के लेन देन का यूनिफाइड इंटरफेस यूपीआई कामयाबी की दास्तान का एक गैर मुतनाज़े हिस्सा है। मुंबई में फिनटेक आलमी फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली है कि जब भी फिनटेक का जिक्र किया जाता है तो ये यूपीआई के बगैर अधूरा रहता है।
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: टेक्नोलॉजी के जरिए तफवीज इख्तियारात के अपने बुनियादी फलसफे को दोहराते हुए वजीर आजम ने यूपीआई की माली शमूलियत के एक हतमी आले कार के तौर पर सताइश की, जो ऐसे शोबों में कामयाबी के साथ दाखिल हुआ जिन्हें रिवायती बैंकिंग तौर तरीकों में नजरअंदाज कर दिया गया था। वजीर आजम ने इशारा दिया कि सिर्फ अगस्त के महीने में यूपीआई के जरिए 24 अरब से ज्यादा बार रकूम का लेन देन किया गया। भारत के अहम डिजिटल लेन देन निजाम की आलमी पैमाने पर वसत का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अब यूपीआई का इस्तेमाल 11 मुल्कों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से बैनुल अक्वामी सतह पर रकूम के लेन देन के लिए वो सब कुछ रोजमर्रा की एक हकीकत बन गया है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था।
3: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई,

0: क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरान की इस घड़ी में हमेशा श्रीलंका के साथ है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और अकीदे पर मबनी हैं। जनाब सिंह श्रीलंका की सरकर्दा क्यादत के साथ बातचीत के लिए कल इस मुल्क के अपने पहले 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत के दौरान ये राय जनी की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी तहजीबी और तहजीबी सकाफती रिश्ते हैं, जिससे दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम हुई है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज दोगुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: भारत और कुवैत ने मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान कल कुवैत में भारत कुवैत दफ्तर खारजा के 8वें दौर का सलाह मशवरा किया गया। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन और कुवैत की उमूर खारजा की वजारत में एशियाई उमूर के असिस्टेंट वजीर खारजा नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इस मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने सियासी ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सलामती, तवानाई, टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम के राब्तों समेत मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने बाहमी तआवुन के मुश्तरका कमीशन के तरीक़ेकार के तहत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंगों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वजारत खारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुनासिब तारीख पर नई दिल्ली में दफ्तर खारजा के अगले दौर के सलाह मशवरे से भी इत्तेफाक किया। वजारत ने कहा कि भारत और कुवैत के दरमियान देरीना रबते हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। वजारत ने यह भी बताया कि कुवैत में 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम रबते के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजारत आज वाराणसी में तग़ज़िये के 9वें कौमी महीने 2026 का आगाज करेगी। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नापूर्णा देवी वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रुद्राक्ष कन्वेक्शन मरकज में इस मुहिम का आगाज करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: ये मुहिम सितम्बर के महीने में पूरे मुल्क के आंगनवाड़ी मरकजों, स्कूलों, पंचायतों और घरों में समाज के लोगों के साथ मिलकर चलाई जाएगी। इस साल तग़ज़िये के कौमी महीने का मौजू है हमारी आंगनवाड़ियाँ हमारी जिम्मेदारी। तग़ज़िये के महीने 2026 के दौरान खुराक के तनव्वो और वाफिर प्रोटीन, आंगनवाड़ी मरकजों में ताज़ा गर्म पका हुआ खाना, समाज की जिम्मेदारी और जवाबदेही, तग़ज़िये और बचपन के इब्तदाई दौर की तरक्की के बारे में तालीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 साल की तकमील, वाराणसी में मुनक़िद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में तग़ज़िये से मुतालिक एक मेले, मुस्तफिदीन के तजुर्बात पर मबनी एक वीडियो प्रेजेंटेशन और मरकजी वजीर आंगनवाड़ी कारकुनों के दरमियान एक मुजाकरे का अहतमाम किया जाएगा। मरकजी वजीर ममलकत सावित्री ठाकुर और ख़वातीन की बहबूद और बच्चों की तरक्की और तग़ज़िये की रियासती वजीर बेबी रानी मौर्य भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। लखनऊ से सुशील चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: नागालैंड भी मुल्क के उन हिस्सों में शामिल हो रहा है जहां नवा राष्ट्रीय पोषण माह 2026 मनाया जा रहा है। समाजी बहबूद का रियासती महकमा सेहत और खानदानी बहबूद के महकमे के साथ मिलकर इस मुहिम को अंजाम देने में सरगर्म है। सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के कौमी वजीर नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवीरम एलिवेटेड राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। कौमी शाहराह नंबर 66 पर 6 लेन वाले 5 किलोमीटर से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 641 करोड़ रुपए की लागत आई है। उम्मीद है कि इससे पणजी और रियासत के शुमाली हिस्से के दरमियान ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। ये राहदारी आम ट्रैफिक के लिए 11 सितंबर को शुरू कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उम्मीद है कि इस राहदारी से रोजाना 75,000 से 80,000 गाड़ियां गुजरेंगी। इस तरह मौजूदा सड़कों से तकरीबन 60% गाड़ियों की आमदोरफ्त कम हो जाएगी।

0: इस प्रोजेक्ट का मकसद मापुसा पणजी के मसरूफ रास्ते पर गाड़ियों के हुजूम में कमी लाना है। ये उम्मीद भी की जाती है कि इस आम राहदारी से सयाहों और तिजारती गाड़ियों की नकलो हरकत में बेहतरी आ जाएगी। पणजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई है क्योंकि अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। इससे खित्ते मजीद तनाजे का खतरा बढ़ गया है। अमरीका ने कहा है कि उसकी फौज ने पिछले दो दिन के दौरान अमरीकी बहरी जंगी जहाज पर ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाबी इस्लामी IRGC की तरफ से किए गए हमलों के बाद ईरान के खाम तेल के 5 टैंकरों को तबाह कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने उर्दुन में अमरीकी ठिकानों पर मिजाइल हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले दो दिन के दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीका के बहरी जंगी जहाज को निशाना बनाने की दो बार कोशिश की, जिसके जवाब में ये हमले किए गए। उधर IRGC ने बहरीन और कुवैत की बंदरगाहों के करीब टैंकरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कनेडा ने 600 से ज्यादा अमरीकी अशिया पर 50% तक जवाबी महसूलात आयद कर दिए हैं। इस तरह दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान एक तिजारती तनाजे को हवा मिल गई है। अमरीकी अशिया पर यह महसूल कल रात से लागू हो गया है। मुतासरा अशिया में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मादे, टॉयलेट पेपर जैसी घरेलू लाजमी अशिया शामिल हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी एजेंसियों को हुक्म दिया है कि वो कनेडा की अशिया की सरकारी खरीद उस वक्त तक बंद रखें जब तक कनेडा अमेरिका के ताजिरों और किसानों को कनाडा की मार्केट में बराबर की रसाई फराहम नहीं कर देता। छत्तीसगढ़ में कनकेर की एक अदालत ने 5 माओनवाजों को सजाए कैद सुनाई है। इनमें खतरनाक माओनवाज प्रभाकर और उसकी अहलिया राजे कांगे भी शामिल हैं। इन लोगों को यह सजा 2015 में हिफाजती दस्तों पर किए गए एक हमले के केस में सुनाई गई है। प्रभाकर डंडा करनिया खसूसी जोनल कमेटी DKSZC का एक कारिंदा है और उसकी बीवी राजे कांगे डिविजनल कमेटी मेंबर DVCM दर्जे के साथ इस कमेटी से मुंसलिक है। इन दोनों को 7 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। इस केस में मुलविस 3 दीगर माओनवाजों को 5-5 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। ये केस 2015 का है जब माओनवाजों के एक ग्रुप ने हिफाजती दस्तों की एक टीम पर हमला कर दिया था। भारत में जुनूब मगरबी मानसून के खत्म होने से पहले इम्कान है कि एक बार फिर मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो। बारिश का यह सिलसिला वस्ती जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत में 12 से 21 सितंबर के दरमियान जारी रहेगा। मौसमियाती रुझान से पता चलता है कि यह आइंदा बारिश मानसून की वापसी के दौरान आर्जी तौर पर इसके सरगर्म होने की अलामत है, जिसके तहत सितंबर के दूसरे निसफ में मुल्क के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। जुनूब मगरबी मानसून की वापसी का सिलसिला आमतौर पर शिमाल मशरकी भारत से शुरू होता है। इसके बाद यह सिलसिला जुनूब और मशरक की तरफ चला जाता है। महकमे मौसमियात IMD ने आज बिहार, झारखंड, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि अंडमान निकोबार जजाइर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। अमरीकी ओपन टेनिस में खवातीन के सिंगल्स की दिफाई चैंपियन और आला दर्जे की खिलाड़ी एरिना सबालिन्का सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने एक सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल में 6 दर्जे की लिंदा मास्कोवा को शिकस्त दी। सबालिन्का ने कल रात एक जबरदस्त मुकाबले में 7-6, 3-6, 7-6 से कामयाबी हासिल की। मर्दों के सिंगल्स में 11वें दर्जे के फ्रांसिस तियाफो ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने जोड़ीदार अमेरिका के एलेक्स माइकलसन को 5 सेटों के एक सनसनीखेज मैच में शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में डिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला 8वें दर्जे के अमरीकी शेल्टन बेन से होगा। अहमदाबाद में आज तीर अंदाजी की आलमी पैरा सीरीज में भारत के पैरा तीर अंदाज कई तमगे जीतने की कोशिश में है क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ जुमरे में बहुत से सोने और कांसे के तमगे जीतने की तैयारी में हैं। फाइनल में पैरा रिकर्व मिक्स्ड टीम के गोल्ड मेडल के लिए भारत की भावना और हरविंदर सिंह का मुकाबला चीन के लियांग क्यूरुंग और जाई ली से होगा। साल 2026 के एशियन गेम्स के लिए भारतीय दस्ते को कल नई दिल्ली में नौजवानों की उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की मौजूदगी में शानदार अलविदाइया दिया गया। डॉक्टर मांडविया और ओलंपिक एसोसिएशन के सदर PT उषा, खेलों के सेक्रेटरी हरिरंजन राव और शेफ दे मिशन सहदेव यादव ने एथलीट्स और माविन स्टाफ की मौजूदगी में बाजाब्ता जर्सी का इजरा किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी। श्री नवीन ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो गांवों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
0: भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और सीमित पहुंच के कारण टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूरिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण और बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
2: रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रश्मि जी, हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर। और देखिए रश्मि जी, जो हमारे श्रोता है ना, उनका साथ हमें वो ऊर्जा देता है जिससे हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाते हैं, क्यों?
2: जी बिल्कुल।
1: और तो ऐसे ही हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि हमारे कार्यक्रम के साथ आप ऐसे ही जुड़ते रहिए और हमें हर रोज एक नई ऊर्जा से भरते रहिए। तो करते हैं कार्यक्रम का आगाज अपने आज के प्रश्न से, क्यों?
2: जी। और प्रश्न से पहले कुछ एक जानकारी भी दे दें।
1: हाँ जी, हाँ,
2: तो देखिए, क्योंकि आज जो है हम याद कर रहे हैं मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी को, और उनकी पुण्यतिथि है आज, और उर्दू के प्रसिद्ध शायरों में उनका नाम गिना जाता है। जो उनकी गजलें हैं वो प्रेम और संवेदना का संदेश देती
1: जी,
2: हैं।
1: जी जी बिल्कुल। और देखिए, काफ़ी अभी अपनी अभिव्यक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे मुरादाबादी जी, और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और देखिए, आज साथ ही साथ आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी की भी जयंती है। और आपका जो मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारत तेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारत तेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। उन्होंने गद्य से लेकर कविता, नाटक और पत्रकारिता तक हिंदी का नक्शा बदल कर रख दिया था
2: जी,
1: है ना।
2: और अनगिनत जो उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। और अगर हम याद करें तो भाई, अब जो सितंबर माह है, बहुत जल्दी हिंदी दिवस भी आएगा प्रतिभा। और उनका जो कहा हुआ कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, अपनी भाषा की जो तरक्की जब होती है तो फिर सब तरफ से तरक्की होती है, तो इसी से कुछ जुड़ा हुआ है हमारा आज का प्रश्न। तो हम आज याद कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, और उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और साथ भी ले रहे हैं इसी सब्जेक्ट से जुड़ा, विषय से जुड़ा प्रश्न। वो बताइए आप
1: जी। आज देखिए रश्मि जी, जो भाषा होती है वो सिर्फ संवाद का जरिया ही नहीं होती बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान भी होती है।
2: वाह, कितनी सुंदर बात
1: जी। और तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे श्रोताओं को बताना है कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उनकी उसकी कौन सी खासियत बहुत प्रिय है, है ना, उसके बारे में हमारे श्रोता आज हमें बताएं। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों में बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं।
2: ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष लिया है प्रतिभा आपने। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता जो है वो भाषा अपने आप अकेले में तो बोलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ उन भाषा में संवाद नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है अपने अपने काम में लगे होते हैं तो भाषाएं जो है ना हमारी छूटती सी जाती हैं परिवार
1: जी,
2: में
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये अच्छी बात है कि वो क्या कर रहे हैं।
1: तो हमारे श्रोता हमें इस प्रश्न का जवाब दें जिसके लिए हमारे

0: दुल्हन एक रात की। अभी इस फिल्म से आपने गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और बात करते हैं रश्मि जी ज़ीरो FIR की, है ना?
1: जी बिल्कुल। और ये जो ज़ीरो FIR है, ये एक ऐसी FIR है प्रतिभा, जो घटना होती है वो उसके स्थान के अधिकार क्षेत्र से बाहर वाले भी किसी भी पुलिस थाने में ये ज़ीरो FIR करवाई जा सकती है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है ज़ीरो FIR, इसके बारे में आप बताएं।
0: देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि होता क्या है कि अगर घटना किसी दूसरे शहर में पहले होती थी तो जो भी पीड़ित होती थी महिला या कोई भी व्यक्ति, तो वो उस अधिकार क्षेत्र में जो थाना आता था वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते थे। तो इस समस्या के हल के लिए अभी ये किया गया है कि अगर घटना किसी भी शहर में हुई है तो आप वहाँ जाकर उस थाने में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
1: या जिस महिला के साथ घटना दूसरे शहर में हुई है तब भी वो अपने नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है। तो ऐसा होता है जो संबंधित पुलिस थाना होता है वो बाद में उस FIR की कॉपी को क्षेत्र के संबंधित थाने में भेज देता है जहाँ पर घटना हुई थी। ऐसा जो थाना है वो मना नहीं कर सकता कि जो है उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। तो ज़ीरो FIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि घटना के स्थान को लेकर जो है कोई विवाद ना हो और शिकायत दर्ज कराने में

0: कोई देरी ना हो।
1: हाँ बिल्कुल। और देखिए, किसी भी पुलिस थाने में जैसा कि आपने बताया कि शिकायत ये दर्ज कराई जा सकती है, क्षेत्र अधिकार की बाध्यता नहीं है जैसा अभी हम बता ही रहे थे, यानी कि जरूरी नहीं है कि FIR उसी थाने में दर्ज हो जिसके क्षेत्र में घटना हुई है।
0: और महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है जो छेड़छाड़ या हिंसा या कोई ऐसा अपराध हो जाए, उस स्थिति में तत्काल अगर शिकायत करानी हो तो ये इस्तेमाल की जा सकती है, और दर्ज कराने में, शिकायत दर्ज कराने में इसकी में मदद मिलती है।
1: बिल्कुल। और देखिए, शिकायत दर्ज होने के बाद आवश्यक प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, और अपराध की जगह कोई भी हो, शिकायत दर्ज कराने में देरी नहीं होनी चाहिए, और जो 0 FIR है इसी अधिकार और सुविधा को मजबूत करती है।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी तकदीर। और रश्मि जी, देखिए अब बात करते हैं नागालैंड के एक ऐसे गांव की जिसने प्रकृति के संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया।
1: जी, कौन सा गांव है ये?
0: भाई, उस गांव का नाम है खोनोमा गांव।
1: अच्छा।
0: और अंगामी नागा समुदाय का ये गाँव पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली की मिसाल माना जाता है।
1: जी, यानी कि जब

0: पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो भाई ये जो गांव है और यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की कि अब जो बाकी सारे गांव हैं उनके लिए भी अनुकरणीय है। तो होता क्या था प्रतिभा, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो शिकार के लिए जाने जाते हैं
1: जी
0: और शिकार करने जाते थे, पर बुज़ुर्गों को ये महसूस हुआ कि इस अत्यधिक शिकार से

0: उनको लगा कि अब रोकना पड़ेगा, और उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये माना कि हमें ये रोकना चाहिए। और शिकार जो जब रोका गया तो फिर पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया, और उसके बाद जो है ये सिलसिला चल पड़ा।
1: बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो है ना हॉर्नबिल नाम का जो एक पक्षी है उसकी प्रजाति एकदम विलुप्त हो गई थी जैसा कि आप बात कर रहे थे। तो जो बुजुर्गों ने ये जो एक इनिशिएटिव लिया, एक जो स्टार्ट किया, ये बहुत ही अच्छा किया। और देखो यहाँ की जो ना केवल उनका जो एफर्ट है कि प्रकृति संरक्षण, साथ ही साथ अगर हम खनोमा गाँव की बात करते हैं तो यहाँ पर पारंपरिक सीढ़ीदार खेती और एल्डर पेड़ों का उपयोग भी प्रकृति के साथ तालमेल का जो एक बेहतरीन उदाहरण है।
0: जी
1: और जो खनोमा ने प्रकृति की रक्षा के साथ आजीविका के अवसर भी देखिए विकसित किए हैं। यहाँ पर इको टूरिज्म, होम स्टे, बांस के उत्पाद और वर्षा जल संचयन की जो भी जो शैली है उसने उनकी जीवन शैली को बहुत ज़्यादा टिकाऊ बना दिया है।
0: जी
1: और जो खनोमा गांव जो है हम एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है।
0: हाँ। और यहाँ पर इसके अलावा जो ट्रेपोगन अभयारण्य है उसको विकसित किया गया है, और जो दुर्लभ जो वन्य जीव है, खासकर जो ब्लाइथ ट्रेपोगन है, इन पक्षियों का संरक्षण हुआ है। और जो आपने पारंपरिक एल्डर पेड़ों की बात की, तो सीढ़ीदार पारंपरिक होते
1: जी
0: ही हैं पेड़, तो उससे क्या होता है, जो उर्वर रहते हैं खेत। और ये भी कोशिश की गई, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की जाती है, तो उसमें भी बहुत मदद मिली। तो कुल मिलाकर सभी जो रहवासी हैं उन्होंने मेहनत करी, और जो गांव को एक अच्छा पर्यावरण संरक्षण करते हुए उदाहरण बना दिया।

0: मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी महबूबा। और रश्मि जी, हमारे जो प्रश्न था उसके जवाब आने लग गए हैं हमारे
1: जी,
0: पास।
1: बिल्कुल। और एक प्रश्न आप एक बार फिर बता दीजिए।
0: देखिए, हमारा जो श्रोताओं प्रश्न था वो भाषा से जुड़ा हुआ था कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उसकी कौन सी खासियत प्रिय है, उसके बारे में आपको बताना है। और इसके अलावा कि आप अपने घरों में बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: और जो पहला जो जवाब आया है वो नवीन भाटिया जी का मोतीनगर से आ गया है। वो कहते हैं सिंधी में हम बोलते हैं और सबसे अच्छा शब्द जो लगता है उन्हें वो है सुथो। शायद मैं सही उच्चारण किया है, बताएंगे वो, यानी अच्छा। और भाई वाह, बहुत अच्छा।
0: बिल्कुल। और देखिए, दूसरा जो जवाब आया है वो महेश अग्रवाल जी का आया है और उन्होंने बोला है कि हमारी जो मातृभाषा है वो सदाबहार भाषा है और यहाँ ये जो है हमारे रग रग में रची बसी हुई है और कहीं ना कहीं हम इस भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। तो देखिए, ये बात तो है ही है कि सदाबहार है हमारी मातृभाषा जो हम अपने घर में बोलते हैं, बड़ों से, बुजुर्गों से, बच्चों से। उसका असर तो हमारे व्यवहार में, बोलचाल में नजर आता ही आता
1: और
0: है।
1: और गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ नागलोई से और वो कह रहे हैं कि भाषा तो अपनी जगह सभी अच्छी हैं, लेकिन हमें अपने जानकारों से बात करना या परिवार के सदस्यों से बात करना, उसमें मातृभाषा का असर ही ज़्यादा काम करता है और भाषा से ही इंसान की खूबियों का पता चलता है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा सुदर्शन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वे कह रहे हैं कि भाषा जो है संस्कृति, समाज और परिवार और देश की पहचान होती है। भाषा पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे को भी आपस में जोड़ देती है और हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। और आप उसके अलावा शुभकामनाएं उन्होंने लिखी हैं और ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। और एक और मेल हमारे पास आया है, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब तो नहीं है परंतु आपने जो 0 FIR के बारे में कहा था ना, प्रतिभा, तो डॉक्टर राजेश्वर राव का जो ये मेल आया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप 0 FIR को रजिस्टर करने से मना करते हैं तो ये एक कानूना अपराध होता है और इसको चैलेंज किया जा सकता है उच्च अधिकारियों के द्वारा के पास। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद एडवोकेट हैं तो उसके बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी हमें दी है। तो ऐसे ही हमारे पास से जुड़े रहिए और हमें मेल करते रहिए, हमें आपकी मेल्स का इंतज़ार रहता है श्रोताओं। लेकिन आप जो है हमारा प्रश्न दोबारा प्रतिभा आपको बता देती है, मेल एड्रेस फिर बता देती हैं। हमारा प्रश्न है
0: जी, हमारा प्रश्न मातृभाषा से जुड़ा हुआ है कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उसकी कौन सी खासियत ज़्यादा प्रिय है और उसके बारे में आपको हमें बताना है। और साथ ही साथ अपने घरों में आप बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: और एक

0: और मेल आ गया है प्रतिभा हमारे पास, उमेश जी, उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं कि हमें अपनी मातृभाषा का वो शब्द प्रिय है जिसमें भावना हो और अपनों का प्यार हो और संस्कृति हो, उसमें अपनापन और सुकून तो होता ही है, और बच्चों को जो है हम अपनी मातृभाषा भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: सही।
2: हंसो मत, बोलो।

0: अभिनेत्री फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: और अब बात करेंगे, एक ऐसी ज़रूरी बात है ये जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था मन की बात कार्यक्रम में, और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि इस अभियान का जो लक्ष्य है वो ड्रग फ्री इंडिया है। उन्होंने कहा कि युवा किसी न किसी तरह से जो ये नशे की लत का शिकार है, तो हमारा सामूहिक संकल्प ये रहेगा कि युवाओं की जो का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो खुशी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में सामूहिक संकल्प होना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल। और देखिए, नशे की आदत सिर्फ युवा या उस व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी बात के दौरान उन लोगों की सराहना भी की है जो ड्रग्स के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं और उनकी मदद के लिए आगे भी आते हैं।
1: और ये भी ज़रूरी है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अलग अलग भाषाओं में ऐसा रचनात्मक कंटेंट बनाए, चाहे वो वीडियो हो चाहे पोस्ट हो, तो जो कि समाज को नशे के खिलाफ जागरूक कर सके।
0: जी।
1: और क्रिएटिव जो कंटेंट है उसके फॉर्मल कैंपेन से ज़्यादा उसका असरदार होता है और वो ज़्यादा कारगर होता है।
0: बिल्कुल। और देखिए, लोगों और क्रिएटर से उन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री जी ने ये भी अपील की है मन की बात में कि वे इस अभियान से जुड़ी अपनी कोशिशों और कहानियों को सोशल मीडिया पर हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ शेयर करें ताकि ये एक व्यापक जन आंदोलन बन सके।
1: और जो युवा संगीतकार है और लेखक हैं उनसे ऐसे ड्रग फ्री जीवन जीने का और उसका संदेश देने वाले शक्तिशाली नारे और गाने बनाने के लिए आग्रह किया। और ये भी कहा है उन्होंने कि छात्र और जो थिएटर ग्रुप्स होते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे दिल को छू लेने वाले नाटक लिखें और उसे प्रसारित करें जिसमें कि ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनके साथ उनसे बाहर निकलने के रास्तों को दिखाया गया हो।
0: बिल्कुल। और देखिए कि ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिससे हम भी जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं और किसी के जीवन को बेहतर और नशा मुक्त बनाने में हम मदद कर सकते हैं।

0: हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे, आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: जी, और ये फिल्म भी प्रतिभा जो नशे से मुक्ति के लिए ही बनी थी, उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में पूरी कहानी बुनी गई थी। तो ये गीत आपने इस जो सुनवाया हमारे श्रोताओं को, और अगला जो विषय है वो क्या लेने जा रही हैं आप?
0: देखिए, अगला जो विषय है वो पोषण से जुड़ा हुआ है, है ना। देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चे देश का भविष्य है, ये हम सभी जानते हैं, और उनके स्वस्थ भविष्य की नींव जो जीवन के शुरुआती वर्षों में ही पड़ती है। पहले 6 वर्ष बच्चों के शारीरिक और मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
1: और ये जो बात आप इसलिए बता रही हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष दिन है, उसके बारे में भी तो बताइए।
0: जी, आज का दिन जो है 9 सितंबर से जो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की शुरुआत हो चुकी है।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और जो ये जो शुरुआत हुई है इस माह की, उसका जो उद्देश्य है वो बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने और समुदाय को पोषण संबंधी प्रयासों से जोड़ने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत शुरू किया गया
1: जी,
0: है।
1: जी, और इस वर्ष की थीम है प्रतिभा, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। अभियान का जो उद्देश्य है वो आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जो है प्रारंभिक बाल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में मजबूती से विकसित करना है। जो पोषण माह है इसके दौरान स्थानीय और कम लागत वाली पौष्टिक खाद्य सामग्री से तैयार जो व्यंजन होते हैं उन्हें प्रदर्शन करना भी, देखो हमारा जो स्थानीय जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी बहुत पोषण में मजबूत हैं, जैसे कि जो मिलेट्स हैं, यहाँ के मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, दालें हैं, ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना पौष्टिक हैं खाद्य पदार्थ।

0: जो इनको दैनिक आहार में शामिल करने के लिए जागरूकता पैदा करना बहुत आवश्यक है, और साथ में जो है कम लागत से बनने वाली पौष्टिक खाद्य सामग्री को पोषण मेले और प्रोटीन रिच फूड अभियान जैसी गतिविधियों से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, और इसी को ये आयोजन इसी को अंडरलाइन करते हुए किया जा रहा
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। और देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पके भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर भी इस जो जो चलेगा जो महीने पूरा भर जिसमें गतिविधियां होंगी उसमें
0: जी
1: विशेष ध्यान दिया जाएगा इस बात पर भी। और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर माताओं और अभिभावकों को पोषण और बाल देखभाल की जानकारी भी देंगे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रतिभा, जो हमारी भारतीय माएँ हैं वो तो बड़े, उनको चिंता रहती है कि बच्चों को जो है
1: जी
0: ताज़ा और गर्म भोजन मिले।
1: जी
0: हर एक माँ की यही चिंता रहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं बच्चे को जो है ताज़ी अपने हाथ से बनी हुई रोटी खिला सकूँ, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो ये पोषण से भी जुड़ी हुई है, और ज़रूरत है कि ये जो बच्चों का सुपोषण है भाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।
2: समझो और समझो।

0: जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नन्ही सी कली ने एक आधिकारिक FIDE रेटिंग हासिल करके दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
1: बिल्कुल
0: और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने एलेना मिश्रा को 1432 की आधिकारिक ब्लिट्स रेटिंग दी है। भाई क्या बात है।
1: और देखिए ये जो उपलब्धि है उन्हें प्रतिस्पर्धी शतरंज में शानदार प्रदर्शन के बाद मिली। और देखिए इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेटिंग हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
0: जी
1: और देखिए खास बात ये है कि 2022 या उसके बाद जन्म लेने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिनकी आधिकारिक फीडे रेटिंग मौजूद है आज की।
0: और प्रतिभा, मैं इनकी फोटो देख रही थी, बड़ी एक इनोसेंट सी इनकी फोटोग्राफ थी, और मुझे लग रहा था इतनी छोटी सी बच्ची, मतलब ये लगता है कि अभी ये छोटी बच्ची क्या ही समझ पाएगी। लेकिन भाई ऐसी रणनीति बनाकर जो उन्होंने शतरंज खेली, भाई चाल ही तो चलनी होती है
1: जी
0: उसमें,
1: जी
0: तो ये कमाल की इस बच्ची ने शतरंज खेली और ये बड़ी रेटिंग लेकर आई, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी उपलब्धि जो है उन्हें अपने आयु वर्ग में दुनिया की सबसे अलग और खास खिलाड़ियों में शामिल करती है।
1: बिल्कुल देखिए आज वो दुनिया का उभरता हुआ सितारा बन गई। और जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये मान रहे हैं कि अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में भारत को एक और बड़ी शतरंज खिलाड़ी मिल सकती है।

0: और इस बीच एक और मेल आ गई है, मुकेश सटवाल लक्ष्मीबाई नगर से कह रहे हैं कि हम भी शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो उत्तर प्रदेश से हैं और दादरी क्षेत्र से कहते हैं, और कहते हैं हम छोटे बच्चों से इसी भाषा में बात करते हैं। इसके अलावा मंटू शर्मा कह रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, सबसे प्रिय भाषा है, राजू अग्रवाल हरियाणा से, और समय कह रहा है
1: जी कि हम अपने श्रोताओं से ले अनुमति, लेकिन रश्मि जी ये हमारा वादा है अपने श्रोताओं से कि फिर किसी और दिन इसी वक्त पर हम अपने श्रोताओं से ज़रूर मिलेंगे, बहुत सारे विषयों के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। लेकिन आप हमारे साथ इस मंच पर, इस कार्यक्रम पर हमेशा जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, क्यों रश्मि जी?
0: जी बिल्कुल, और फिलहाल हम लेते हैं उनसे अनुमति
1: हाँ
0: और कार्यक्रम को समेटते हैं जिसका नाम है घर आंगन, और कहते हैं
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत के संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।

0: the 4 municipal councils and 1 ward of a municipal corporation. Polling is being held in the municipal corporations of Alwar, Bharatpur, Bikaner and Bhilwara, besides several municipal councils including those in Barmer, Jaisalmer, Karoli, Dungarpur, Pratapgarh, Chittorgarh and Nagaur. The IMD has forecast heavy rainfall over Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal and parts of Northeast India till tomorrow. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. Benchmark domestic equity indices were trading in the red during the afternoon session today. The Sensex shed 396 points to 75,181, while the Nifty declined 75 points to 23,560 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:10 हुआ है और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सभी सुनने वाले कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा एक ही फिल्म से, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए एक फिल्म चुनकर लाते हैं और उसी कड़ी में आज हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं 60 के दशक की एक वो खूबसूरत फिल्म जिसमें बहुत सी चीज़ों की जो धारणा थी उसको तोड़ा। जी हाँ, बात कर रहे हैं सन 1963 की फिल्म भरोसा के बारे में, जिसको निर्देशित किया था के शंकर ने। कलाकारों की बात करें तो गुरुदत्त साहब, आशा पारिक, महमूद, शोभा कोटे की अदाकारी से सजी ये फिल्म सिर्फ अपनी कहानी नहीं बल्कि अपने बेमिसाल संगीत और अपने बहुत से किस्सों के लिए जानी जाती है। तो आज का जो ये सफ़र है हमारा, उस सफ़र में हम करेंगे यही सब बातें, यही सब चर्चाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लीजिए करते हैं शुरुआत इस कार्यक्रम की आशा जी की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म भरोसा। भरोसा, वो भरोसा जो कि भाई हर किसी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और दो दोस्तों के बीच में भरोसा, दो कोई भी रिश्तों के बीच में भरोसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी एक गलत फहमी होती है और पूरा रिश्ता डगमगा जाता है। और इसी गलत फहमी और इसी भरोसे के ऊपर आधारित है साल 1963 में आई फिल्म भरोसा। जी हाँ दोस्तों, इसी ताने बाने में बुनी गई है ये फिल्म, जहाँ पर एक दोस्त किसी काम से बाहर जाते वक्त अपनी सारी धन दौलत और अपनी बेटी सीता यानी कि आशा जी को अपने जिगरी दोस्त शिवचरण के पास छोड़ के चले जाता है। और जो शिवचरण है वो सीता को अपने बेटे रामा यानी कि गुरुदत्त साहब के साथ अपने ही बच्चे की तरह बड़ा करता है। वक्त बीतता है, रामा सीता बड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे भाई, इसमें भरोसा कहाँ से टूटा या गलत फहमी कहाँ से आई? तो कहानी में आता है छोटा सा ट्विस्ट। जब रामदास वापस लौटता है तो वहाँ पर शिवचरण का जो लालची साला रसिक होता है यानी कि महमूद साहब होते हैं, वो थोड़ा सा जो स्थितियां हैं वो गड़बड़ कर देते हैं और कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि रामदास को लगता है कि उनके दोस्त शिवचरण ने उनकी जायदाद, उनके पैसे और उनकी बेटी के साथ धोखा किया है। और वहीं पर यही सब चीज़ों को या जो भी उनके जो रामा के पिता हैं शिवचरण, उन पर जो इल्ज़ाम लगे उन सबको मिटाने के लिए रामा आगे आते हैं और अपने प्यार सीता को हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलों से गुजरते हैं। और जैसा कि हमेशा होता है, लास्ट में होती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग, सच सामने आता है, सारे शक सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं और वापस से जो भरोसा है वो बन जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जो सच्चा भरोसा होता है ना वो कभी भी नहीं टूटता है, इसीलिए सच्चा भरोसा हमेशा बना के रखिए। फिल्म के बारे में जुड़ी और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक और ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, बिल्कुल, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, यही सब होता है अगर आपका भरोसा टूटता है। वैसे आज हम बात कर रहे हैं फिल्म भरोसा के बारे में, और इस फिल्म में जो किरदार निभाया है अहम, वो हैं गुरुदत्त साहब। और वैसे जब भी हम गुरुदत्त साहब के बारे में सोचते हैं या उनका नाम हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक जो इमेज बनकर आती है वो प्यासा फिल्म या कागज़ के फूल फिल्म में जो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर निभाया, हमें वो नज़र आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर गुरुदत्त साहब ने हर तरह के रंगों का किरदार निभाया, और वही इस फिल्म में भी उन्होंने मस्ती भी की है, मज़े भी किए हैं, और शायद ये गीत सुन के भी आपको लगा होगा। वैसे गुरुदत्त साहब के बारे में एक चीज़ और मानी जाती है कि वो डायरेक्टर खुद भी बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे एक निर्देशक के रूप में माने जाते हैं, लेकिन ये पूरी फिल्म उन्होंने के शंकर साहब के साथ बनी। और के शंकर साहब दक्षिण भारत के एक काफ़ी बड़े निर्देशक रहे हैं, और गुरुदत्त साहब उनकी काबिलियत से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो उनको सौंपा और कहा कि भई अब आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। और जिस भरोसे के साथ गुरुदत्त साहब ने के शंकर के हाथ में ये फिल्म सौंपी थी, वो भरोसे पर पूरी तरह से

कि गुरुदत्त साहब जो हैं वो सिर्फ ट्रेजेडी किंग या फिर बोले कि एक बहुत ही सैड फिल्मों के मास्टर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही उम्दा और कमर्शियल अभिनेता हैं जो कि दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाना अच्छी तरह जानते हैं। और वही ना, देखिए जो अभी हम आपको गीत सुनवाने वाले हैं वो गीत में आप देखेंगे किस तरह से गुरुदत्त साहब पर ये गीत जो है वो फिल्माया गया, और उनके चेहरे के जो भाव हैं वो वाकई में गुरुदत्त साहब की पूरी खासियत को बताते हैं, और किस तरह से वो बिना शब्द को बोले अपने चेहरे से पूरी जो कहानी है वो बयां कर देते हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात करें फिल्म भरोसा के बारे में। इस फिल्म में गुरुदत्त साहब ने जहाँ बिल्कुल अपनी इमेज से अलग किरदार निभाया, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ जो जोड़ी बनी वो आशा पारिक जी की बनी। और आशा पारिक जी को आपने देखा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम चुलबुले और बहुत ही ज़्यादा हंसमुख डांसिंग टाइप के जो उनके कैरेक्टर हुआ करते थे, बहुत चुलबुली होती थी वो अपने हर किरदार में। लेकिन इन सब के इतर इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही संजीदा किरदार निभाया है। एक बहुत ही मैच्योर लड़की का किरदार इतनी शिद्दत के साथ उन्होंने निभाया कि हर किसी की आंखें नम हो गई उनके इस कैरेक्टर को देखकर। और दूसरी बात, भाई गुरुदत्त साहब के साथ उनकी ये जोड़ी पहली बार, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि गुरुदत्त साहब आशा जी के साथ में आए हैं और उन दोनों ने इन किरदारों को निभाया। और वाकई में जब ये जोड़ी स्क्रीन पर आई तो हर किसी ने उनको प्यार दिया और लोगों के भरोसे पर ये जोड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ में उतरी। और वैसे भी जो 60 का दशक था उस वक्त में आशा जी को हिट गर्ल कहा जाता था, उनको जुबली गर्ल बोलते थे। वो जिस फिल्म में होती थी उस फिल्म का हिट होना या जबरदस्त सफलता पाना ये साबित कर देता है कि आशा जी जिस फिल्म में होंगी वो तो हिट होगी ही होगी, क्योंकि वो सभी के दिलों में राज करती थी। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और हमारी फिल्म है आज की भरोसा। भरोसा फिल्म जिसमें एक और ऐसा किरदार था जिसने इस फिल्म को हिट बनाने में पूरा साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, वो किरदार था कॉमेडी के किंग महमूद जी का। जी हाँ दोस्तों, महमूद साहब जब भी पर्दे पर आते तो भाई उनके लिए तालियां बजने लगती और लोग ठहाके लगाने लगते। वो इस तरह से अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं ना, ये तो हर कोई जानता है। और ऊपर से इस फिल्म में शोभा खोटे के साथ जो उनकी जोड़ी बनी, वाह, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाई उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है ना, उसका कोई भी जवाब नहीं है। और साथ ही साथ उन दोनों की जुगलबंदी ने तो लोगों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। फिल्म में जहाँ दूसरी तरफ गुरुदत्त साहब, आशा पारेख जैसे दिग्गज कलाकार थे, वहीं दूसरी तरफ महमूद साहब की जो अदाकारी थी, उनकी जब भी स्क्रीन पर एंट्री होती तो वो एक अलग और अपनी अलग पहचान, अपनी मजबूत पहचान के साथ आते। मतलब कह सकते हैं कि आप बड़े बड़े कलाकारों के रहते हुए महमूद साहब ने अपनी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो हर किसी को मनवाई। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

कृष्णा देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, और ये जुड़े हमारे साथ सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह के साथ, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, जलालाबाद वेस्ट से जुड़े हैं सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा के साथ, मेरठ कैंट से जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी के साथ में, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा जी, जसवीर, जसी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलकांत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीमती दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता के साथ पिपरिया से, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम नागर कोहरा, जिला नंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गांव फनासी, जिला हसार से जुड़े हैं राजकुमार डूड़ी, प्रमोद कुमार डूड़ी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत खूबसूरत जानकारी इन्होंने हम तक पहुँचाई है। लिखते हैं कि फिल्म में संगीत रवि का और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, मोहम्मद रफ़ी, आशा जी की आवाज़ में सभी नगमे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया के साथ, सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और डीबी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से, पोटिया कला दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं संजय कुमार साहू जी, और हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से, जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जोन टिकेस्ट्रो, रोजी पाल और विलिस टिकेस्ट्रो के साथ में। और दोस्तों ये अगला संदेश आया जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक का, निसार अली जी का हमारे पास ये संदेश है, धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबू के साथ ये हमसे जुड़े हुए हैं, नंदेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशान नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मनहरेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवशंकर तामुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर के साथ, और ये जुड़े हैं डूडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं, ये है चूड़ी लाइन मुंगेली से छत्तीसगढ़, मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हैं, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार के सभी सदस्य, पश्चिम सिंह भूप चाईबासा, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप के साथ। तो दोस्तों ये थे वो सभी संदेश जिनके ज़रिए आप सभी हम तक जुड़े, हमसे जुड़े और इस कार्यक्रम से जुड़े, अपनी जो बातें हैं वो आपने हम तक शेयर की। और देखो बातों बातों में वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। और हमारी जो आज की फिल्म भरोसा है, जिसमें आशा जी, गुरुदत्त साहब, महमूद साहब की अदाकारी थी, वैसे दोस्तों इस फिल्म को देखकर भी और वैसे भी हम यही कहेंगे कि रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनकी सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है। और उम्मीद है आज का ये सफ़र, ये जो गीत हैं, ये सब आपके दिल को ज़रूर छुए होंगे। तो अब वक्त हो चला आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि 2:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी से चाहूँगी विदा लेना, लेकिन छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और आपके साथ हूँ मैं, आपके होस्ट और दोस्त प्रीति, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। संदीप मकर, ज्योति मकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये जुड़े हमारे साथ कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोरैया, जलंधर पंजाब से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर 1:40 होने को है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनतक सेवा च 25 साल पूरे होने मौके 17 सितंबर को उन्होंने जन्मदिन से 1 महीना चलने वाली सेवा संकल्प मुहिम शुरू करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार सनाइक मीटिंग की। दोनों नेताओं ने दोहराया कि दोवें देश विकास अपने लोगों की भलाई लिए रल के काम करना जारी रखेंगे। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की 2 दिन मीटिंग आज मुंबई में शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्यनिकेतन में इमारत ढहण की घटना तो बाद दिल्ली नगर निगम को राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में गैर कानूनी उसारियों विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए ने। अहमदाबाद विश्व पैरा तीरअंदाजी सीरीज च अज भारतीय तीरअंदाज वक् वक् मुकाबलों में सोने के कांसे के तमगे का मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनतक सेवा च 25 साल पूरे होने मौके 17 सितंबर को उन्होंने जन्मदिन से 1 महीना चलने वाली सेवा संकल्प मुहिम शुरू करेगी। अज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रधान नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्तूबर को जन सेवा के 25 साल पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्तूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री वजह अहदा संभालिया। उन्होंने कहा कि पिछले सालों दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों की सेवा राही राष्ट्र की सेवा मंत्र नाल अपनी सेवा यात्रा लगातार जारी रखी है। बीजेपी प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ देश की तरक्की सिर्फ विकास तक सीमित नहीं सगों भारत की सभ्याचारक पछाण की विरासत भी मजबूत हुई है।
2: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: देश में बागडोर संभाली सी तो भारत नीतियां च खड़ोत नाल जूझ रहा सी अते दुनिया दीआं पंज सब तो कमजोर अर्थव्यवस्थावां विचों एक सी। उन्हां कहा कि अज भारत दुनिया दी सब तो तेजी नाल वध रही प्रमुख अर्थव्यवस्था है। सेवा संकल्प मुहिम की शुरुआत खूनदान कैंपा नाल होएगी। श्री नवीन ने कहा कि 7 अक्तूबर नूं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने लई एक सेवा ज्योति कलश यात्रा भी कढ़ी जाएगी जो पेंडू ते शहरी इलाकियां नूं जोड़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार सनाइक मीटिंग की। मीटिंग में दोनों आगुओं ने दोहराया कि सभ्यता नाल जुड़े नेड़ले गुआंढी के समुद्री भाईवाल होने के नाते भारत और श्रीलंका दोनों देशों के विकास और अपने लोगों की भलाई लिए रल के काम करना जारी रखेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा शांति और खुशहाली को यकीनी बनाने रल के काम करने के अपने संकल्प को भी दोहराया है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज्म का इरादा किया। ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत का कौमी तख्जिया महीने का आगाज वाराणसी में हुआ। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क के मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुश्तरक तहजीबी अख्तार के हामिल करीबी पड़ोसी और बहरी साझेदार के तौर पर भारत और श्रीलंका दोनों मुल्कों की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस खित्ते में हिफाजत, सलामती, अमन व खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा भी किया। ब्रिक्स सरबराह इजलास से पहले ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग इस माह की 9 से 10 तारीख के दौरान मुंबई में मुनक़िद हो रही है। इस साल ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक का मौजू है इस्तेहकाम, इख्तिरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए मिलकर काम करना। इससे कबल वज़राए खजाना और गवर्नरों की मुलाकात गुज़श्ता माह जयपुर में हुई थी। खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने मुंबई में हतमी मीटिंग से पहले ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के कलीदी नतायज का जायजा लिया। नवा कौमी तख्जिया महीना आज वाराणसी के इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जोशो खरोश के साथ शुरू हुआ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी के साथ खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर मुमलिकत सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के कई वजीरों की मौजूदगी में शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नवे कौमी तग्जिया महीने के जरिए तग्जिया से भरपूर और बाइख्तियार भारत बनाने का अज़्म है। ये मुहिम हर माँ की सेहत, हर बच्चे के तग्जिये और हर कुनबे के खुशहाली से मरबूत है। उन्होंने कहा कि खालिस और मुतवाजन ग़िज़ा सेहतमंद और खुशहाल मुल्क के लिए मजबूत बुनियाद है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2014 से गरीबों, बच्चों, हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए सेहत बख्श तगजिए को अव्वलीन तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी मराकज के निज़ाम में वाज तब्दीलियां आई हैं। आंगनवाड़ी मराकज अब सिर्फ तगजिए

0: में नदी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। आबी वसाइल का महकमा और रियासती इंतजामिया की टीमें पुश्तों पर करीबी नजर रखे हुई हैं। पटना से निधिश्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा दो दिन के दौरान उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार जजायर में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया। ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत का कौमी तख्जिया महीने का आगाज वाराणसी में हुआ। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क की मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh holds meeting with Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake in Colombo. Both leaders reaffirm to work for security, peace and prosperity of region. Final BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors meeting kicks off in Mumbai. Ministry of Women and Child Development National Nutrition Month launched in Varanasi. BJP to launch month-long Seva Sankalp Abhiyan from 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life. Forecast of heavy rain over eastern and northeastern states for next 24 hours. And in US Open tennis, Ben Shelton enters men's singles semi-final, beating defending champion Carlos Alcaraz. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh held a meeting with President of Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake in Colombo today. During the meeting, both the leaders reaffirmed that as civilizational twins, close neighbors and maritime partners, India and Sri Lanka will continue to work together for the development of both the countries and welfare of their people. In a social media post, Mr. Singh said that they also reaffirmed to work jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. The defense minister arrived in Colombo yesterday on a three-day visit to Sri Lanka. He's leading a high-level delegation comprising senior officials from the Ministries of Defence and External Affairs. Mr. Singh described Indian community in Sri Lanka as a bridge between the two countries, saying they play a crucial role in strengthening friendship between the two nations. He made the remarks while interacting with the members of the Indian diaspora. The Defence Minister said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis. He said both nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship. In his address, Mr. Singh highlighted India's rapid economic transformation, saying the country is among the fastest growing major economies in the world and contributes more than 16% to global growth. Ahead of the BRICS Leaders Summit, the final BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors meeting is taking place in Mumbai. This year's BRICS Finance Track is guided by the theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Previously, the finance ministers and governors had met in Jaipur last month. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman reviewed the key outcomes of the BRICS Finance Track before the scheduled final meeting in Mumbai. The Union Ministry of Women and Child Development launched the 9th National Nutrition Month at the International Rudraksh Convention Centre in Varanasi today. Chief Minister Yogi Adityanath, along with Union Minister for Women and Child Development, Annapurna Devi.

0: came in the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 and small-cap 100 indices fell 0.3% each a short while ago. Brent crude prices breached the $100 per barrel mark in intraday trade, reaching their highest level in 7 weeks and continuing to trade near those elevated levels. The Ministry of Labour and Employment, in collaboration with the Maharashtra government, will organise a national conference on building and other construction workers, BOCW, in Mumbai on the 11th and 12th of this month. The conference will be chaired by Union Minister of Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandviya. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Minister Rajnath Singh holds meeting with Sri Lankan President Anuradha Kumarasinghe in Colombo. Both leaders reaffirmed to work for security, peace and prosperity of the region. Final breaks, finance ministers and central bank governors meeting kicks off in Mumbai. Ministry of Women and Child Development National Nutrition Month launched in Varanasi. BJP to launch month-long Seva Sankalp Abhiyan from 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life. Forecast of heavy rain over eastern and northeastern states for next 24 hours. And in US Open tennis, Ben Shelton enters men's singles semi-final, beating defending champion Carlos Alcaraz. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Priyanka Arora. मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधा कुमारासिन्हे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधा कुमारासिन्हे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग

0: 40 नागरिकों की मौत हुई है जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्र

0: भारत की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
0: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान

0: ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी के होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज है तारीख 9, यानी कि 9 सितंबर, और आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारे का जन्मदिन है। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है डिसिप्लिन की। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, बेमिसाल टाइमिंग और बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में देने की जिद और मार्शल आर्ट। जी आप तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही पहचाना, क्योंकि अगर मार्शल आर्ट और अनुशासन की बात होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम होता है राजीव हरिओम भाटिया, यानी कि हम सबके चहेते अक्की या कहें कि अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में खतरनाक स्टंट करने वाला वो एक्शन हीरो जो कि सन 2000 आते आते हम सबको पेट पकड़कर हंसाने पे मजबूर किया और बन गया कॉमेडी किंग।

या फिर देशभक्ति की फिल्मों को उसने किया, या फिर सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाला जिम्मेदार नागरिक का किरदार निभाया। आप कह सकते हैं कि अक्षय ने हर किरदार में जान फूंकी। तो चलिए आज उन्हीं की बातों को करते हैं और उन्हीं के इस शानदार सफर के बारे में हम बात करते हैं। तो करते हैं शुरुआत उन्हीं की एक खूबसूरत से फिल्म तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी से। ये खूबसूरत संगीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

जी दोस्तों, दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों से सफ़र शुरू हुआ अक्षय कुमार का, जो कि उतना आसान भी नहीं था। जी, अमृतसर में वो पैदा हुए और उनका बचपन बीता दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में। पढ़ने के बाद मार्शल आर्ट सीखने की उनको बहुत इच्छा हुई और वो पहुंच गए बैंकॉक। वहां उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल की और अपने गुजर बसर के लिए वहाँ पर उन्होंने साथ साथ काम किया शेफ और वेटर का। वहाँ पर सीखने के बाद वापस आए, सीधे पहुँचे मुंबई और यहाँ पर उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। लेकिन किस्मत ने करवट तब बदली जब उनके एक स्टूडेंट के फोटोग्राफर पिता ने उन्हें मॉडलिंग का सुझाव दिया। जी हाँ, क्योंकि उस स्टूडेंट के फादर ने बोला कि भाई, आप तो दिखने में हीरो जैसे लगते हो, तो क्यों नहीं फिल्मों में ट्राई करते या फिर मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो। और ये सोचकर अक्षय कुमार पहुंच गए अपना फोटो शूट कराने के लिए, क्योंकि उन्हें लग गया कि भाई, खाली इस ये मार्शल आर्ट सिखाने से तो उतना काम नहीं चलेगा कि आप अपना अच्छे से गुजर बसर कर सकें या अच्छे से पैसा कमा सकें। और यही सोचकर उन्होंने फोटोग्राफर का काम शुरू किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्षय कुमार, जो कि आज के टाइम पर बहुत डिसिप्लिन और बहुत टाइमिंग को लेकर मशहूर हैं कि भाई वो एकदम जो टाइमिंग है उसके बहुत पक्के हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं अभिजीत की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। अभिजीत के साथ हैं अलका याग्निक और फिल्म है खिलाड़ी। भाई, खिलाड़ी कुमार के बारे में बात कर रहे हैं तो गाना भी उन्हीं की फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ, और आपके साथ हूँ मैं आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे अक्की कुमार यानी कि अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार जो कि भाई आज बहुत ज़्यादा सफल बड़े हीरो हैं, और उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा राज है वो है उनका अनुशासन।

यानी कि उनका डिसिप्लिन। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, रोज़ाना वर्कआउट करते हैं, कोई लेट नाइट पार्टियाँ नहीं करते और साल में 3 से 4 फिल्में पूरी करते हैं। और ये टाइम टेबल आज के नए कलाकारों के लिए तो वाकई में एक मिसाल के रूप में है। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह से वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं उसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल जब वो सिखाया करते थे कराटे, उस वक्त में उनके एक स्टूडेंट के फादर ने उन्हें मॉडलिंग के ऑफ़र दिया, कहा कि भाई आप मॉडलिंग कीजिए और फ़ोटोशूट कराइए। उसके बाद में अक्षय ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और वो एक जगह पर उन्हें मौका मिला मॉडलिंग के लिए जाने के लिए। वहाँ पर उन्हें फ़ोटोशूट कराना था, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा लेट से पहुँचे, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लेट से पहुँचे थे। दरअसल वहाँ पर वो पहुँचे 1 घंटे से ज़्यादा लेट, और 1 घंटे से ज़्यादा लेट पहुँचने की वजह से उन्हें वहाँ पर बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, बहुत कुछ उनको बातें बोली गईं। और वही एक वक्त था वो जो बातें थीं वो पूरी तरह से उनके दिल को छू गई, और उसके बाद से उन्होंने वादा किया अपने आप से कि मैं कभी भी वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मतलब टाइम की वैल्यू करूंगा। और वो दिन है, और आज का दिन है, अक्षय अमार जो अक्षय कुमार हैं वो अपने हर जगह पर हर काम पर बिल्कुल टाइम से पहुंचते हैं, बल्कि टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज उनका बर्थडे है, तो वो अपने बर्थडे पे भी कुछ बहुत बड़ा तामझाम, बहुत बड़ी पार्टीज़ नहीं करते जैसा कि नॉर्मली हर कोई करता है, बल्कि अक्षय कुमार टाइम से रात को 9 बजे सो जाते हैं और सुबह अगले दिन जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, और उसके बाद अपना केक काटते हैं। कहते हैं ना कि सूरज को जगाना आसान नहीं होता, लेकिन अक्षय कुमार हर रोज़ सुबह सूरज के उगने से पहले उठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज इतने साल के बाद में भी आप देखें ना, 50 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं, उसके बाद भी जब वो पर्दे पर 100 फीट की ऊंचाई से जंप लगाते हैं, तो जो यंग एज के बच्चे हैं, जो कि 20-20 साल के लड़के हैं, वो भी उनके सामने पानी भरने लगते हैं और उनको अपना फिटनेस आइकन मानते हैं। वैसे वो किस्सा जब उनको टाइमिंग के लिए डांट पड़ी, उसके बाद उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, और उसके बाद वो बन गए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में खिलाड़ी नंबर 1।

जी दोस्तों, सन 1991 में फिल्म सौगंध से अक्षय कुमार हीरो बन गए और फिर वाकई में हर किसी ने वो तमाशा देखा। जी हाँ, क्योंकि सन 1992 में आई उनकी एक और फिल्म, 1991 में जो फिल्म आई सौगंध, उससे उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिली जिसके अक्षय कुमार हकदार थे। और फिर 1992 में आई उनकी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, और खिलाड़ी फिल्म आने के बाद तो मतलब ऐसा हुआ कि अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार ही पड़ गया, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक खिलाड़ी नाम वाली फिल्मों में काम किया, चाहे वो खिलाड़ी फिल्म हो, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी 786, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। जी हाँ, और यही वजह है कि अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार हो गया। लेकिन 90 के दशक में, जी हाँ दोस्तों, 90s में जब हर कोई एक्शन सीन्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया करते थे, उस वक्त अक्षय कुमार ने अपने सभी स्टंट खुद किए, चाहे वो 100-100 फीट ऊंची इमारतों से छलांग लगाना हो या फिर हेलीकॉप्टर से लटकना हो। जी हाँ, हर तरह के स्टंट जो हैं वो अक्षय कुमार खुद किया करते थे, और शायद यही वजह है कि उनका ये जो खिलाड़ी कुमार नाम पड़ा वो बिल्कुल सही पड़ा।

बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि वो अक्षय कुमार जो कि एक्शन कुमार बन गए थे, जो कि खिलाड़ी कुमार बन गए थे, वो एक्शन से अलग भी कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2000 में आई फिल्म प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी, जिसने अक्षय कुमार के करियर को एक नया रास्ता दिया, एक नया रूप दिया। इस फिल्म में राजू का किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि भाई उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो लाजवाब है, उसके बराबर कोई नहीं। और इसके बाद तो उन्होंने कॉमेडी फिल्मों की झड़ी ही लगा दी। गरम मसाला, वेलकम, सिंह स्कीम, भागम भाग जैसी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने इस तरह के किरदार निभाए, इस तरह की एक्टिंग की कि देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर वापस से एक बार और बदलाव आया। वो बदलाव क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे ये खूबसूरत सा गीत फिल्म हेरा फेरी से। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे श्रोताओं के जो संदेश है वो भी हम शामिल कर लेते हैं। और ये हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, नितेश कुमार देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर के साथ पलारी छत्तीसगढ़ से, स्वर्ण सिंह गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज के साथ, और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरमीत सिंह मीता हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से जुड़े हैं अशोक कुमार सहगल जी, गुलाम साबिर राही मेराजा हमारे साथ जुड़े हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, सैयद मसरूर जुड़े हैं शाइना हसन के साथ, नाजिया इब्राहिम के साथ सहारनपुर कुमार हेड़ा से, ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता हमारे साथ जुड़े हैं, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा, नेहा, राजू, जगदीश देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवा, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता गोप हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से, अस्तुपुरा जिला मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से भी जुड़े हैं, बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं कराची से अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाभा जिला पटियाला पंजाब से जुड़े हैं सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु के साथ में, और पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप गुगलानी जी के साथ में, और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुंचाया है मॉडल टाउन करनाल से, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये संदीप जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं कमल सहानी जी के साथ पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर पंजाब से, तुलसी मस्कीन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं संजय ढींगिया जी, नमन अपार ढींगिया के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पी एस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, और ये जो अगला संदेश है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी जी हमारे साथ जुड़े हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, चिरमेरी कोरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सौदा, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गाँव फरासी जिला हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दोस्तों, और भी बहुत से संदेश हैं, निसार अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वर्ण सिंह गिल जी एक बार फिर से जुड़े हैं, सुदर्शन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थे वो संदेश, और लीजिए अभी हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म हेरा फेरी से।

जी दोस्तों, आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने बात की अक्षय कुमार जी के बारे में, जो कि चांदनी चौक की तंगलियों से निकलकर बॉलीवुड के शहंशाह अक्षय कुमार बने। और दोस्तों, यहाँ तक बनने का जो उनका सफ़र था, वो बहुत ही ज़्यादा एक अनुशासन के साथ में था। और उनका जो ये डिसिप्लिन है, वो हमें यही सिखाता है कि अगर आपको दुनिया में कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो आपको डिसिप्लिन तो बिल्कुल लाना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों, ये सफ़र हमारा यहीं तक था और हमने आज अक्षय कुमार जी के बारे में ढेर सारी बातें की। तो आप मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, क्योंकि ये सफ़र हमारा यहीं तक है। और 3 बजे हमारे साथ होंगी अर्चना गोयल जी, जो लेकर आएंगे कार्यक्रम मैटरनी मेलेडी। तो अब मैं उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जाती हूँ फिल्म धड़कन से। मुझे दीजिए अनुमति और इंतज़ार कीजिए अर्चना गोयल जी का। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज का। कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, फिल्म गीत सिर्फ गीत नहीं होते, कभी वो किसी फिल्म की पहचान बन जाते हैं और कभी किसी कलाकार के करियर का सबसे खूबसूरत पड़ाव, और कभी कभी तो एक गीत के पीछे ऐसी कहानी छुपी होती है जिसे सुनकर हम कह उठते हैं, अरे इस गीत की कहानी तो गीत से भी ज़्यादा दिलचस्प है। मैटनी मेलोडीज़ के सफ़र में हम आपको ले चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जहाँ गीत लिखे जाते थे, धुनें रची जाती थीं और फिर उन्हें पर्दे तक पहुँचाने में पूरी टीम अपनी आत्मा लगा देती थी। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ सदाबहार गीत और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से। कार्यक्रम का आगाज किया है आरती फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब बात करते हैं उस गीत की जो मोहब्बत के इजहार का पर्याय बन गया। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम का वो गीत जिसमें मधुबाला यानी अनारकली और दिलीप कुमार यानी

सलीम की प्रेम कहानी और सामने बादशाह अकबर की सत्ता। इस गीत की सबसे खास बात थी इसका फिल्मांकन। शीश महल का भव्य सेट और चारों तरफ शीशे और उसमें दिखाई देती अनारकली की परछाइयाँ। कहा जाता है कि इस गीत को अंतिम रूप देने से पहले शकील बदायूनी ने इसके बोलों पर बहुत मेहनत की और कई बदलाव भी किए। रिकॉर्डिंग के दौर से जुड़ी एक मशहूर जानकारी ये थी कि प्रतिध्वनि जैसा प्रभाव पैदा करने के लिए लता मंगेशकर ने स्टूडियो के बाथरूम में ये गीत रिकॉर्ड किया था, और जब ये गीत पर्दे पर आया तो अनारकली का प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं रहा, वो बगावत की आवाज़ बन गया।

कमाल है ना, कुछ गीत कानों से होकर दिल तक पहुंचते हैं और कुछ गीत सीधे यादों में घर बना लेते हैं। हमारी संगीत की यात्रा अभी लंबी है, अब चलते हैं एक ऐसे गीत की तरफ जिसमें प्रेम है, मासूमियत है और साथ ही एक खूबसूरत सफ़र। दोस्तों, उस दौर के गीतों की खूबसूरती शायद यही थी कि गीत खत्म हो जाता था लेकिन उसका असर खत्म नहीं होता था। ऐसे ही सुनते हैं एक और गीत फिल्म यहूदी से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और गीता दत्त की।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। और अब सुनते हैं गुरुदत्त का प्यासा से एक ऐसा सिनेमा जिसमें मोहब्बत के साथ साथ समाज और इंसानी संवेदनाओं पर भी सवाल किए। और साहिर लुधियानवी के शब्द ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक शायर की बेचैनी है। प्यासा के गीतों ने फिल्म की आत्मा को आवाज़ दी। दिलचस्प बात ये थी कि फिल्म का गीत हम आपकी आंखों में मूल कहानी का हिस्सा नहीं था, वितरकों की मांग पर फिल्म में जोड़ा गया था ताकि फिल्म के गंभीर वातावरण में थोड़ा हल्का फुल्का

का रंग आए। यही तो उस दौर के सिनेमा की खूबसूरती थी। गीत कहानी से अलग नहीं होते थे, गीत खुद कहानी का हिस्सा बन जाया करते थे।

कितनी अजीब बात है, समय बदल गया, तकनीक बदल गई, फिल्में बदल गईं, लेकिन दिल की भाषा आज भी वही है। कुछ गीत दिल की आवाज़ बनकर हमारे सीने में धड़कते रहते हैं और ये गीत वाकई हमारे जज्बात होते हैं। ऐसे ही एक गीत फिल्म ऊंचे लोग से, इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

और अब आपको सुनवाते हैं श्री 420 का वो गीत जिसमें राज कपूर हीरो थे, सर पर टोपी, कोट और कंधे पर बेफिक्री, और गीत मेरा जूता है जापानी। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और ये गीत उस दौर के भारत की बदलती पहचान और आत्मविश्वास को भी अपने भीतर समेटे हुए था। एक लोकप्रिय संगीत समीक्षा में इसे नए भारत के गौरव और बदलते शहरी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण गीतों में गिना गया। गीत में विदेशी चीजों का जिक्र है, लेकिन दिल की बात बिल्कुल अपनी है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यही पंक्ति इस गीत को समय से आगे ले जाती है।

हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सब पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल गए हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

आज के मैटनी मेलोडीज़ में हमने सुने कुछ सदाबहार गीत जिनमें कहानी थी, कविता थी, संगीत था और सबसे बढ़कर जिंदगी थी। ये गीत आज भी हमारे साथ चलते हैं क्योंकि अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, वे बस हमारी यादों में थोड़े और गहरे उतरते जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, मैं फिर लौटूंगी कुछ किस्सों गीतों के साथ जहाँ हर गीत के पीछे छुपी होती है एक कहानी। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्त चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: मतों का फ़ायदा उठाकर शादी का ऐलान किए बगैर ही रुखसत हो जाता है। इस सदमे से कुबरा दिक यानी टीबी के मर्ज़ का शिकार होकर इंतकाल कर जाती है, और बी अम्मा जो उम्र भर दूसरों की बेटियों के लिए चौथी का जोड़ा सीती रहीं, बिलाखिर अपनी ही बेटी का कफन तैयार करती हैं। इस्मत ने इस दिलखराश मंजर को यूं कलमबंद किया है, बी अम्मा ने आखिरी टांका भरकर तोड़ लिया। दो मोटे मोटे आंसू उनके रुई जैसे नर्म गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। इनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकलीं और वो मुस्कुरा दीं, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि इनकी कुबरा का जोड़ा बनकर तैयार हो गया और कोई दम में शहनाइयाँ बज उठेंगी। इस्मत का दूसरा अहम अफसाना सोने का अंडा है, जो बेटी की पैदाइश को मनहूस समझने वाली समाजी और जाहिलाना जहनियत पर गहरी चोट करता है। अफसाने का किरदार बंदू मियाँ जब तीसरी बार बेटी की विलादत की खबर सुनते हैं तो अपने होश व हवास खो बैठते हैं और घर का खुशगवार माहौल मातम में बदल जाता है। इस्मत इस अलमिये की अक्कासी करते हुए लिखती हैं, सहनची के सामने पड़ी हुई खाट पर बंदू मियाँ सर पकड़े ऐसे बैठे थे जानो डाकू इनके घर में कूमल फोड़कर दर आए हैं और इनकी 9 महीने की जमा पूंजी को आग लगाकर एक राख का ढेर बना गए हैं। ये तीसरा गांव था इनकी जाने हजी पर, एक सहा दूसरा सहा, पर इस तीसरे चरके ने तो इनकी कमर दोहरी कर दी। एक नहीं तीन बेटियां, ऐसी धसी हुई छाती पर तीन पहाड़, तीन बाराते, तीन दूल्हों के 100 नखरे, तीन जहेजों की 3,000 तंतने, जैसे तीन लंबी नागिने इनकी गर्दन की तरफ जबाने लपलपाती बढ़ी चली आ रही हूं। रह रहकर एक दबी हुई ख्वाहिश फन उठाती एक बार जी कड़ा करके इन तीनों नागिनों का गला घोट डालें। इसके बरक्स अफसाना छुई मुई में इस्मत चुगतई ने आला और अदना तबके के दरमियान मौजूद बनावटी नफासत और सच्चाई का मवाजना किया है। यह अफसाना एक तरफ ऊंचे तबके की औरत की मस्नूई नाजुक मिजाजी को बेनकाब करता है तो दूसरी तरफ गरीब औरत की सख्त मशक्कत को सामने लाता है। मगर जब दोनों औरतें एक ही वक्त पर बच्चे को जन्म देती हैं तो फितरत के सामने तमाम समाजी और तबकाती फर्क मिट जाते हैं। इसी तरह अफसाना नन्ही की नानी में इस्मत ने गरीब और बेसहारा तबके की एक मासूम बच्ची नन्ही की दर्दनाक दास्तान बयान की है, जो हालात की मजबूरी की वजह से एक रईस शख्स की जिनसी हवस का शिकार बन जाती है। नन्ही वक्त से पहले जिस्मानी और जहनी तौर पर तलपट होकर एक नामुकम्मल औरत बन जाती है। इक्तिबास मुलायजा, नन्ही भूल गई मगर कुदरत ना भूल सकी। कच्ची कली कबल अज वक्त तोड़कर खिलाने से पंखुड़ियां झड़ जाती हैं, ठोंठ रह जाता है। नन्ही के चेहरे पर से भी ना जाने कितनी मासूम पंखुड़ियां झड़ गईं। चेहरे पर फटकार और रोड़ापन, नन्ही बच्ची से लड़की नहीं बल्कि छलांग मारकर एकदम औरत बन गई। वो कुदरत के मशाक हाथों की सवारी भरपूर औरत नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी मूरत जिस पर किसी दीवाने ने 2 गज लंबा पांव रख दिया हो। ठिगनी मोटी कचोर सी जैसे कच्ची मिट्टी का खिलौना कुम्हार के घुटने तले दब गया हो। नन्ही की नानी हालात और गरीबी के खौफ से खामोश रहती हैं और जब नन्ही फरार हो जाती है तो मुआशरा नानी को ही मलामत करता है और वो इसी दुख में दुनिया से चली जाती हैं। अलावा अजीम अपने अफसाने जाल और छोटी आपा में इस्मत ने सने बलोगत में कदम रखती हुई लड़कियों के जज्बाती जिस्मानी और नफसियाती उलझनों को नहायत ईमानदारी और बेबाकी के साथ पेश किया है। मुख्तसर ये कि इस्मत चुगताई की अफसाना निगारी ने उर्दू अदब को एक नया मोड़ दिया। उनसे पहले औरत को अदब में महज एक ख्वाब एक ख्याली तसव्वुर या सिर्फ मजलूम के तौर पर पेश किया जाता था, मगर इस्मत ने इसे एक जीता जागता सोचता और सवाल करता हुआ वजूद बख्शा। उन्होंने औरत को घुटन की जिंदगी से निकालकर खुददारी खुशशनासी और एहतजाज का रास्ता दिखाया। इनकी तहरीरों में औरत सिर्फ हालात के आगे सर तस्लीम खम नहीं करती बल्कि वो जिंदगी की तमाम तर तलखियों और सच्चाइयों का सामना बेखौफी से करती है। इस्मत चुगताई की ये तख्लीकात आज भी निसाई शऊर आज़ादी फिक्र और समाजी इंसाफ की एक रोशन और ताबिंदा मिसाल हैं।
1: इस्मत चुगताई, निसाई शऊर, समाज और अफसानवी हकीकत। सामीन, इस मौजू पर अभी आप मोहतरमा उज़्मा रिजवान से उनकी तकरीर सुन रही थी और आइए अब चंद अंदाज की आवाज़ में समाअत करते हैं ایک خوبصورت

अभी आप यह गजल सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में। सामीन, हमारा ताल्लुक खास जिस मुआशरे से भी हो, हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात, वाक़यात और हकायक का सामना करते हैं और ज़िंदगी से मुतालिक उन तमाम पहलुओं की अक्कासी अफसाने में बड़ी खुश उसलूबी से की जाती है। यह एक ऐसा आईना होता है जिसमें हम जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, किरदारों

आगे भी मिलना चाहूँगी। आपका बहुत शुक्रिया शैला साहिबा, मुझे भी अच्छा लगा। वो उठ खड़ी हुई और जाने से पहले अपना मोबाइल दे गई। फिर मेरी उससे कभी मुलाकात होने लगी, कभी नहीं। उन्हें मुलाकातों के दरमियान वो मुझे एक बार अपने साथ फंक्शन में ले गई थी। मैंने उसे पहली बार पियानो बजाते हुए देखा था और मैं मभूत होकर रह गया था। उसने मुझे बताया कि उसे यहाँ के एक होटल में महीने भर के लिए एंगेज कर रखा है। उसे हर रात अपने फ़न का मुजाहरा करना पड़ता है। पैसे अच्छे दे रहे थे इसलिए चली आई। मेरे साथ मेरा भाई भी है। मेरे रहने का इंतज़ाम होटल ने किया है। वो बहुत अच्छी पेंटिस्ट थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब वो स्टेज से नीचे उतरी तो सीधे मेरे पास आई। मैंने बहुत हिम्मत करके उसे गले लगा लिया। मुझे ख्याल गुजरा कि शायद उसे अच्छा ना लगे, लेकिन उसके रवैये से मैं भी कुछ ऐसा महसूस न कर सका कि उसे बुरा लगा या नहीं। कुछ देर बाद वो मेरे लिए सिर्फ शहला रह गई और मैं उसके लिए कसीम। उससे मोबाइल पर हर दिन बातें होने लगीं। हम दोनों अक्सर कई कई घंटे साथ घूमते, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, बाहों में बाहें डाले हुए। इन्हीं बातों के दरमियान मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर उसके लिए कोई जज्बा बेदार हो चुका है। मेरे रवैयों में खासी तब्दीली पैदा हो चली थी और शायद शहला भी इस कैफियत से गुजर रही थी। मैंने उसको शहला के बजाय शुबू कहना शुरू कर दिया था, जिसे बहुत अच्छा लगा था। एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा, देखो कसीम, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ, और बस। मुझे ज़ोरदार झटका लगा था। शुबू, फिर ये सब मोहब्बतें, इतना ख्याल, इतनी चाहत, और ये सब कुछ एक दोस्त के भी लिए हो सकता है? बोलो, इस बात के लिए तुम्हारे पास क्या जवाब है? मैं चुप रहा कि मेरे पास इस बात का सचमुच कोई जवाब न था। वो फिर बोली, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त को चाहती हूँ बहुत। देखो, मैंने तुमसे ये बात सिर्फ इसलिए कहीं तुम किसी खुशफहमी का शिकार न हो जाओ और बाद में टीसें तुम्हारी ज़िंदगी के मुश्किल को बढ़ा दें। मुझे लगा जैसे मैं बर्फ़ की सिल बनता जा रहा हूँ। कई दिनों तक हम लोगों ने आपस में बातें नहीं की, लेकिन फिर एक दिन उसकी कॉल आई। उसने कई बार सॉरी किया, इस तरह के पहले बारी बातें नहीं हुई थी। मेरे उसके दरमियान मन मिटाओ कई बार होता, फिर दोस्ती होती। एक दिन दोपहर में उसका फ़ोन आया, कसीम, आज शाम मैं तुमसे चैटिंग नहीं कर सकूंगी। क्यों? मुझे एक म्यूज़िक के मुकाबले में जाना है, तुम भी चलो। नहीं शुबू, मैं कहीं नहीं जा सकूँगा, मैंने डॉक्टर से वक्त ले रखा है, वहाँ से सीधे मेरे पास आ जाओ। अगर मैं जीत गई तो खाना खिलाओगे? हाँ, क्यों नहीं, मैंने तो अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है। फिर मैं जल्दी से बोला, बहसियत एक दोस्त के। शुबू ज़ोर से हंसी और फ़ोन काट दिया। कोई तीन घंटे बाद वो वापस आ गई। उसका चेहरा खिला हुआ था। मुझे गले लगाते हुए बोली, कसीम, मैं फर्स्ट आ गई। अरे वाह, क्या बात है शुबू, मुबारक हो। मैंने भी खुशी का इजहार किया। वो मुझसे अलग होकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। शुबू जाने के लिए उठ खड़ी हुई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, कसीम, प्लीज़ आइंदा इस तरह की कोई डिमांड मत करना, प्लीज़ माई फ्रेंड। मैं कुछ बोला नहीं, बस इस बात में अपना सर हिला दिया। शुबू बहुत नपे तुले अंदाज में कदम उठाती हुई वापस जा रही थी। दरवाजे से निकलते वक्त उसने घूम कर मुझे देखा और बाई बाई का इशारा करते हुए ज़ोर से बोली, कसीम, डिनर ड्यू है। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, वो दरवाजे से निकल चुकी थी। सर्द हवा का एक झोंका आया और गुजर गया। मैंने झुरझुरी ली। फिर जब ड्राइंग रूम के वॉल क्लॉक ने 8 बजाया तो मैं बालकनी से उठकर कमरे में आ गया। बीवी अब तक गहरी नींद सो चुकी थी। मैं वहाँ से फिर उठा, बाथरूम में दाखिल हो गया। कोई आधे घंटे बाद मैं किचन में खड़ा अपने लिए चाय बना रहा था। चाय बनाना मेरे लिए कोई नई बात न थी। पिछले 12 बरसों से यही हो रहा था कि सुबह की चाय मुझे खुद बनानी पड़ती। मैं चाय की प्याली लेकर फिर बालकनी में आ गया। अभी मैं कुर्सी पर बैठा ही नहीं था कि शुबू फिर मेरे पास आ गई। कसीम, मैं परसों वापस अपने घर जा रही हूँ। क्यों? मेरे सवाल में हैरत थी। मैं यहाँ सिर्फ एक महीने के लिए आई थी, अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। क्या तुम सचमुच चली जाओगी? हाँ, जाना तो पड़ेगा, घर में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। ओह, मैंने अपनी गर्दन कुर्सी से लगाकर आंखें बंद कर ली। शुभ, मुझे तो यहाँ से पहले ही चला जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो तुम्हारी वजह से रुका हुआ था। मैं समझ सकती हूँ कसीम, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें छोड़कर मुझे जाना अच्छा लग रहा है? इस अलहदगी के ख्याल से पूरे वजूद में कांटे चुभने लगते हैं। चंद लम्हों के बाद वो मुझसे अलग हटते हुए बोली, कसीम, मैं तुमको कभी नहीं भूल सकूंगी, तुमने मेरी ज़िंदगी में नए रंग भर दिए हैं। इन रंगों के लहरिए अब बार बार मेरी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं
और मैं बाउल

0: से हो जाती हूँ। एक लम्हे के लिए ठहर कर बोली, कसीम मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकोगे, याद आओगे और याद करोगे। वो फिर खामोश हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं पत्थर हो गया हूँ। वो जाने के लिए उठी, मुझे गले लगाया और बोली, कसीम प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ और मुझे हंस कर रुख्सत करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मोबाइल पर कॉन्टेक्ट बनाए रखूँगे। मैं महसूस कर रहा था कि शुब्बू कुछ बेचैन सी है। उसके होंठों पर एक लर्जिश महसूस हो रही थी, जैसे उस पर कोई तूफान गुजर रहा हो। फिर अचानक मेरे मुंह से निकला, शुब्बू। उसने मुझे डिबडिबाई आंखों से देखा, फिर बैठ गई। बोलो कसीम, क्या बोलूँ? कुछ भी बोलो कि ज़िंदगी का ये कठिन सफ़र कुछ आसान हो जाए। क्या चंद दिनों और नहीं रुक सकती? नहीं कसीम, मेरा रिजर्वेशन हो चुका है, मुझे जाना ही होगा। मजबूरियाँ मुझे तुमसे छीनने के लिए मुँह खोले खड़ी हैं। कसीम, मेरा बोझल वजूद बोझल हो रहा है। अच्छा चलूँ। वो फिर उठकर खड़ी हुई। उसने मुझे देखा, मेरी डिबडिबाई आँखों को देखा। उसने एक इर्तियाज देखा जो मेरे पूरे वजूद पर साया फिगन था। वो फिर बैठ गई। नहीं कसीम, प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ। देखो ज़िंदगी इसी का नाम है, आज यहाँ कल वहाँ परसों मादूम। ज़िंदगी के इस रवैये को कोई तब्दील नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं कसीम प्लीज़, मुझे हंस कर रुख्सत करो कि ये लम्हा हमेशा यादों में मौजूद रहे। खुदा हाफिज़ कसीम, खुदा हाफिज़ शुब्बू। मैंने देखा कि शुब्बू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई दरवाजे के बाहर निकल रही है।
1: सर्द मौसम की तपिश, इस उनवान के तहत अभी आप जनाब इसरार गांधी से उनका अफसाना सुन रही थी। प्रोग्राम था अक्से अदब और तरतीब व पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। शाम के 4 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।

印度的里广播电台，从印度时间5点15分钟到6点45分钟和16点到17点30分钟向亚洲播送普通话节目。早间广播频率为15280

约旦河西岸及耶路撒冷的巴勒斯坦选管事务。听众朋友们，新闻报道播送完了，现在播送印度民间歌曲，请收听。

0: News on AIR Official.
1: Spotlight.
2: Dear 听众朋友们, 请收听库马尔山路长的歌曲。

0: 听众朋友们，今天的普通话节目播送到这里，谢谢收听。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
3: नमस्कार, मैं हूं रेनू गुप्ता और आज हम आपका लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बहुत सारी खबरें।
2: बिल्कुल, खूब सारी आज जानकारियां हैं और साथ ही साथ एक खास प्रोग्राम भी है। एशियन गेम्स 2026 पर सीरीज शुरू हो रही है। आज से रोज हम कुछ खेल उठाएंगे और उनके बारे में आपको बताते चलेंगे। हर बार हर रोज नया खेल, नई जानकारी। साथ ही साथ वुमेन्स एशिया कप T20 के मैचेस हो रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। दिलीप ट्रॉफी के बारे में आज फाइनल है, उसके बारे में जानकारी तो देंगे ही। यूएस ओपन हॉकी, सुब्रतो कप और पैरा आर्चरी भी आज के प्रोग्राम में
3: शामिल किया जाएगा। बिल्कुल दीपिका, और सबसे पहले बात करते हैं एशियाई खेलों की, जो कि आज की सबसे खास खबर है हमारी। तो एशियाई खेलों के लिए 503 भारतीय खिलाड़ियों का दल जापान के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। माननीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या शुभकामना संदेश दिया है, आइए सुनते हैं।
4: डे बाय डे देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। हम सब लोगों ने देखा है 2014 में हमें 57 मेडल मिले थे, लेकिन 2023 एशियन गेम्स में हमें 107 मेडल मिला। ये मेडल में बढ़ोतरी क्यों हुई? देश में एक स्पोर्ट्स के लिए इकोसिस्टम क्रिएट हुई। देश के युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन हुआ। फेडरेशन लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर कंटिन्यूस डायलॉग के आधार पर कई बदलाव करे गए। उसका नतीजा ये आया कि 2023 में 2014 के सापेक्ष में 53% हमारा मेडल बढ़ा, और उसमें भी मैंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ में भी देखा हमारा गोल्ड मेडल में बढ़ोतरी हो रही है। एशियन गेम्स में भी लास्ट 2014 के सापेक्ष में हम 2023 की तुलना करें तो 75% गोल्ड मेडल में बढ़ोतरी हुई। पैरा एथलेटिक्स में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 111 पैरा एथलेटिक्स में लास्ट एशियन गेम्स में हमें मेडल मिला। हमें और अच्छा करना है, ये हमें डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी क्षमता से हम बहुत कम है। ये देश में ब्रेन पावर, मैन पावर और टैलेंट पूल की कोई कमी नहीं है। जब जब ये देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिली है, देश को अपॉर्चुनिटी मिली है, तब देश ने दुनिया में नॉट ओनली फॉर

0: स्पोर्ट्स सेक्टर बट एवरी सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मेंस करके हमने दिखाया है। और इसलिए आने वाले दिनों में हमें एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करके प्रेशर को परफॉर्मेंस में बदलना है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा हमारे मंत्री जी ने, बहुत टैलेंट और बहुत दमखम है हमारे खिलाड़ियों में। और अब बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की
2: और सुनते हैं ये खास सीरीज चीयर फॉर इंडिया।

0: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ी एक बार फिर पूरी ताकत, आत्मविश्वास और उम्मीदों के साथ उतरने को तैयार है। निशाना साधने से लेकर कोर्ट पर मुकाबला करने तक, पूल से लेकर मैदान तक, हर जगह होगी भारत की चुनौती और हर मुकाबले में होगी देश की उम्मीद। तो आइए जानें भारतीय दल की तैयारियों को, हमारे खिलाड़ियों की ताकत को, पिछले एशियाई खेलों के प्रदर्शन को और उन उम्मीदों को जो इस बार भारत से जुड़ी हैं, क्योंकि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये है तिरंगे के लिए जुनून। बने रहिए हमारे साथ चीयर्स फॉर इंडिया में एशियन गेम्स 2026 की पूरी तैयारी और भारत की हर बड़ी उम्मीद के साथ। आज की कड़ी में हम जानेंगे सेपेक टक्रो, वॉलीबॉल और एक्वेटिक्स के बारे में। जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक एशियाई खेलों का आयोजन होने जा रहा है। पिछली बार हांगझोउ में भारत ने इतिहास रचा था, 107 पदक भारत की झोली में आए थे, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक थे। और सबसे पहले बात करते हैं सेपेक टक्रो की। एक छोटी सी गेंद, सामने ऊंचा नेट और खिलाड़ी उसे हाथ लगाए बिना पैर, घुटने और सिर से खेल रहा है, यही है सेपेक टक्रो। यह खेल देखने में जितना रोमांचक है, खेलने में उतना ही मुश्किल। और इस खेल में भारत अब कोई नया नाम नहीं है। 2018 के एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था और फिर हांगझोउ 2022 में भारतीय महिला टीम ने भी विमेंस रेगू में कांस्य पदक अपने नाम किया, यानी भारत ने इस खेल में अपने लिए एक जगह बना ली है। अब नजर है जापान पर। इस बार भारतीय पुरुष टीम में अरुण राजू, जसवीर सिंह, आशीष चुनावत, लोखोन सिंह, बॉबी कुमार और आकाश युमनाम जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं महिला टीम में प्रिया देवी, मैपक देवी, चौबा देवी, शिल्पा एलंगम्बम और उनके साथी खिलाड़ी भारत की चुनौती पेश करेंगे। नाम भले ही अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, पिछले पदक को और चमकदार बनाना। क्या कहते हैं सेपेक टक्रो के कोच संदीप, आइए सुनते हैं।
1: सर, टीम पूरी तरह तैयार है और इस बार भी हम मेडल के साथ ही वापसी करेंगे, हमें उम्मीद है पूरी पूरी। इंडिया टीम की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं अभी साई सेंटर सोनीपत में और टीम सब प्लेयर्स फिट हैं। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार, इनसे हमें चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, हम जीतेंगे जरूर। हाँ जी, टेस्ट इवेंट हुआ था उसमें इंडिया टीम ने गोल्ड मेडल लिया था और उसके बाद हमारा वर्ल्ड कप हुआ था मलेशिया में, उसमें हमने क्वाड इवेंट में सिल्वर मेडल लिया और उसके बाद अभी हाल ही में मलेशिया में 39th किंग्स कप हुआ था, उसमें इंडिया टीम ने 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए।
0: कोच से खास बातचीत करी हमारे सहयोगी नवीन कुमार शर्मा ने। भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी में फिटनेस के साथ साथ कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस पर खास जोर है, क्योंकि सेपेक टक्रो में एक ही पल की चूक और मुकाबला हाथ से निकल सकता है, लेकिन अगर टाइमिंग सही रही, कोऑर्डिनेशन बेहतरीन रहा तो भारतीय टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है। तो सेपेक टक्रो में भारत की उम्मीद पदक की है और इस बार सवाल सिर्फ पदक जीतने का नहीं है, पदक का रंग बदलने का भी है। और अब चलते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की ओर। एक तरफ नेट, दूसरी तरफ विरोधी टीम और बीच में भारतीय खिलाड़ी। इस खेल से भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। एशियन गेम्स में भारत ने वॉलीबॉल में 3 पदक जीते हैं, 1958 में कांस्य, 1962 में रजत और 1986 में फिर कांस्य, लेकिन उसके बाद पदक का इंतजार, एक लंबा इंतजार। और अब एची नोगोया में भारतीय पुरुष टीम इस इंतजार को खत्म करने का सपना लेकर उतर रही है।

भारतीय टीम में अमित गुलिया, अश्वल राय, मुथुस्वामी अपायू, चिराग यादव, जॉयल बेंजामिन और उनके साथी खिलाड़ी शामिल हैं। कुल 12 खिलाड़ी, छोटी सी टीम लेकिन बड़ा लक्ष्य। होंगजाऊ में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की थी। साउथ कोरिया जैसी मजबूत टीम को भारत ने हराकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन आगे बढ़ते हुए टीम पोडियम तक नहीं पहुंच सकी। इस बार टीम उस अनुभव से सीख लेकर उतर रही है। अची नगोया में भारत के सामने कतर, वियतनाम और हांगकांग, चाइना जैसी टीमें होंगी। ऐसे में सर्व महत्वपूर्ण होगा, हर ब्लॉक महत्वपूर्ण होगा, हर पॉइंट महत्वपूर्ण होगा और सबसे जरूरी होगा प्रेशर में धैर्य, क्योंकि वॉलीबॉल में एक पॉइंट में मोमेंटम बदल सकता है। एक शानदार रैली पूरी टीम में जोश भर सकती है और एक छोटी गलती मुकाबले की दिशा बदल सकती है। भारतीय टीम के पास अनुभव भी है, युवा जोश भी है और सबसे बड़ी बात पदक का सपना है। 37 साल से ज्यादा समय से एशियन गेम्स वॉलीबॉल में भारतीय पुरुष टीम पोडियम से दूर है। अब उम्मीद है कि अची नगोया में यह इंतजार खत्म हो, क्योंकि कभी कभी इतिहास बदलने के लिए बस एक शानदार टूर्नामेंट चाहिए। और अब वॉलीबॉल के कोर्ट से चलते हैं पानी की लहरों के बीच, यानी कि अब बारी है एक्वेटिक्स यानी स्विमिंग की। यहाँ मुकाबला किसी खिलाड़ी से कम और घड़ी से ज्यादा होता है। हर स्ट्रोक मायने रखता है, हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मायने रखता है और फिनिश लाइन पर वही खिलाड़ी आगे होता है जो अपनी पूरी ताकत सही समय पर लगा पाए। अची नगोया के लिए भारत ने 12 स्विमर्स की टीम चुनी है। इस टीम में अनुभव भी है और युवा ऊर्जा भी। श्रीहरि नटराज, साजन प्रकाश, आर्यन नेहरा और वेदांत माधवन जैसे नाम भारतीय उम्मीदों को मजबूत करते हैं। श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लंबा अनुभव है। दोनों ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस अनुभव का फायदा एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर निश्चित रूप से होगा। और फिर नजरें हैं युवा वेदांत माधवन पर। वेदांत 200 मीटर फ्रीस्टाइल और 200 मीटर बैकस्ट्रोक के साथ रिले में भी भारत की चुनौती का हिस्सा है। दूसरी ओर आर्यन नेहरा डिस्टेंस स्विमिंग में भारत की उम्मीद है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी रफ्तार में लगातार सुधार किया है, लेकिन स्विमिंग में भारत के सामने एक बड़ा सवाल भी है। एशियन गेम्स में भारत को स्विमिंग का आखिरी पदक 2014 में मिला था, उसके बाद लंबा इंतजार। होंगझाऊ में भी भारतीय स्विमर्स पोडियम तक नहीं पहुंच पाए, यानी अची नगोया में लक्ष्य साफ है, इस इंतजार को खत्म करना। लेकिन स्विमिंग में पदक जीतना आसान नहीं। एशियन गेम्स में जापान, चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों में स्विमर्स बेहद मजबूत हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को अपना बेस्ट टाइम देना होगा, शायद पर्सनल बेस्ट, शायद नेशनल रिकॉर्ड और अगर दिन भारत का रहा तो शायद पोडियम भी। आज के ये तीन खेल और सपना एक ही। सेपेक टेक्ट्रो में भारत के पास पदक की विरासत है, तो वॉलीबॉल में शानदार इतिहास और लंबे इंतजार को खत्म करने की चुनौती, वहीं स्विमिंग में है एक नई पीढ़ी जो पानी की लहरों को चीरकर भारत को पोडियम तक पहुंचाने का सपना देख रही है। तीनों खेल अलग हैं, तीनों की चुनौतियां अलग हैं, लेकिन खिलाड़ियों की जर्सी पर लिखा है इंडिया, और यही इन सबको जोड़ता है। इस बार भारत की तैयारी सिर्फ मैदान या स्विमिंग पूल तक सीमित नहीं है। खिलाड़ियों को जापान के माहौल के अनुकूल बनाने के लिए हर तरह की फैसिलिटीज खिलाड़ियों को दी जा रही है। अची नगोया गेम से पारंपरिक एथलेटिक्स विलेज नहीं होगा, तो अची नगोया से हम क्या उम्मीद करें? सेपेक टेक्ट्रो से पदक की उम्मीद, वॉलीबॉल से एक लंबे इंतजार को खत्म करने की उम्मीद और स्विमिंग से एक नई शुरुआत। लेकिन याद रखिए, पदक सिर्फ पोडियम पर नहीं बनता, पदक बनता है सुबह की प्रैक्टिस में, खाली स्टेडियम में, बार बार दोहराई गई उसी टेक्निक में और हार के बाद फिर से उठने में और विश्वास में कि अगली बार बेहतर करना है। तो अब अची नगोया में भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे, किसके हाथ में सेपेक टेक्ट्रो की गेंद होगी, किसकी नज़र वॉलीबॉल के नेट पर होगी और कोई स्विमिंग पूल की लेन में खड़ा होगा, लेकिन करोड़ों भारतीयों की नज़र उन पर होगी। हर पॉइंट पर तालियां होंगी, हर स्ट्रोक पर उम्मीद होगी, हर जीत पर तिरंगा लहराएगा और हार भी हुई तो देश कहेगा कोशिश जारी रखो, क्योंकि खेल में सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, जज्बा भी मायने रखता है। तो आइए अची नगोया 2026 में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं और पूरे दिल से कहें चीयर्स फॉर इंडिया, चीयर्स फॉर टीम इंडिया।

जी हाँ दीपिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। खेल में सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, जज्बा भी मायने रखता है। और अब आपको ले चलते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ विमेंस T20 एशिया कप एक रोमांचक मोड़ पर आ पहुँचा है। तो आइए जानते हैं विमेंस T20। T20 एशिया कप में मंगलवार यानी 8 सितंबर को बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच मुकाबला खेला गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मैच में बांग्लादेश ने यूएई को 34 रन से हराया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 103 रन पर 7 विकेट बनाए। जवाब में यूएई की टीम 20 ओवर में 69 रन पर 9 विकेट ही बना सकी। ये जीत बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। टूर्नामेंट के नॉकआउट समीकरण में बांग्लादेश की जीत के साथ अंतिम चार की तस्वीर साफ हुई और अब उसका सामना भारत से होगा। बांग्लादेश ने मुकाबले में गेंदबाजी के दौरान लगातार दबाव बनाए रखा। यूएई की बल्लेबाजी लक्ष्य के सामने गति नहीं पकड़ सकी और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इस नतीजे का अर्थ ये हुआ कि अब विमेंस एशिया कप में सेमीफाइनल मुकाबले होंगे भारत और बांग्लादेश के बीच, जो कि 10 सितंबर को खेला जाएगा, और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, जो 11 सितंबर को खेला जाएगा।

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wasikilizapendwa,
1: fitness trainer, खेल प्रबंधक, referee, umpire, physiotherapist और खेल पत्रकार जैसे क्षेत्रों में भी अवसर उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार पैदा होते हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम हो सकती है। कई बार युवाओं के सामने बेरोजगारी, निराशा, नशे की लत और असामाजिक गतिविधियों जैसी कई चुनौतियां हो सकती हैं। खेल युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उनका समय रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत होता है। खेलों से जुड़े युवा अपने स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। टीम और प्रशिक्षक का सहयोग उन्हें सकारात्मक सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति और अपराध निवारण के प्रयासों के साथ खेल गतिविधियों को जोड़ना उपयोगी हो सकता है। अक्सर लोग खेल और शिक्षा को एक दूसरे का विरोधी समझते हैं, जबकि वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खेलों से विकसित एकाग्रता, अनुशासन और समय प्रबंधन विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी सहायता कर सकते हैं। ग्रामीण विद्यालयों में स्थानीय खेलों को बढ़ावा देकर कम संसाधनों में भी विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। युवाओं के लिए कबड्डी, खो खो, दौड़ और वॉलीबॉल जैसे खेल अपेक्षाकृत कम खर्च में आयोजित किए जा सकते हैं। ग्रामीण युवतियों के विकास की यदि हम बात करें तो खेलों की भूमिका विशेष रूप से उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। खेल उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली बालिकाएं सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती हैं और अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बनती हैं। यदि गांव में लड़कियों के लिए सुरक्षित खेल मैदान, प्रशिक्षक, उचित खेल सामग्री और प्रतियोगिताएं उपलब्ध कराई जाएं, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण बालिकाएं खेलों से जुड़ सकती हैं। इससे लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के गांव में अनेक प्रतिभाशाली युवा ऐसे हैं जिन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता। कई बार आर्थिक कठिनाइयों और सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण युवा अपनी प्रतिभा स्थानीय स्तर तक ही सीमित कर पाते हैं। इसके लिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर नियमित खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। स्कूलों और पंचायतों के माध्यम से प्रतिभा खोज कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल सामग्री, पौष्टिक आहार और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की योजनाएं भी समय समय पर सरकार चलाती रहती है। इससे ग्रामीण प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती हैं। खेलों के अनेक लाभ हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनके विकास के सामने कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या खेल सुविधाओं की कमी है। अनेक गांव में उचित मैदान, खेल उपकरण और प्रशिक्षित कोच उपलब्ध नहीं होते। दूसरी समस्या आर्थिक है। गरीब परिवारों के युवा महंगे खेल उपकरण, प्रशिक्षण और यात्रा का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। तीसरी समस्या खेल और शिक्षा के बीच संतुलन की है। कई परिवार खेलों को करियर के रूप में पर्याप्त महत्व नहीं देते और बच्चों को केवल पारंपरिक रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की खेल भागीदारी सामाजिक और सुरक्षा संबंधी कारणों से कम होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार विद्यालयों, पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए प्रत्येक गांव या गांवों के समूह में सुविधाजनक खेल मैदान विकसित किए जाने चाहिए। खेल सामग्री की व्यवस्था पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से की जा सकती है ताकि ग्रामीण युवाओं का विकास हो सके। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए और प्रशिक्षित खेल शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ग्रामीण प्रतिभाओं को जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचाने के लिए उचित चयन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। आर्थिक रूप से ग्रामीण कमजोर युवा खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति और सहायता योजनाएं होनी चाहिए। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी आवश्यक है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेल क्लब और युवा क्लब

0: बनाए जाने चाहिए। इन क्लबों में नियमित अभ्यास, प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य जागरूकता और करियर मार्गदर्शन जैसी गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। आज ग्रामीण खेल विकास में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को खेल मैदानों, प्रशिक्षण केंद्रों और आवश्यक उपकरणों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने का जो प्रयास करना चाहिए वो सरकार कर रही है। स्थानीय प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध खेल सुविधाओं का नियमित उपयोग हो ताकि युवा अपना करियर बना सकें, और साथ ही साथ इन उपकरणों के रख रखाव का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही निजी क्षेत्र और सामाजिक संस्थाएं भी गाँवों में युवा खेल प्रतिभाओं को प्रायोजित कर सकती हैं। सफल खिलाड़ी ग्रामीण युवाओं के लिए आदर्श बन सकते हैं। गाँव में खेल महोत्सव और प्रतियोगिताएं आयोजित करके खेलों को सामाजिक उत्सव का रूप दिया जा सकता है। श्रोताओं, अंततः कहा जा सकता है कि खेल ग्रामीण युवाओं के सर्वांगीण विकास का शक्तिशाली माध्यम है। वे युवाओं को स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच, अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व, टीम भावना और सामाजिक जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। खेल रोजगार और करियर के नए अवसर भी गांवों में खुल सकते हैं तथा युवाओं को नशे और असामाजिक गतिविधियों से दूर रखने में सहायता कर सकते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें सही अवसर और उचित संसाधन देने की है। यदि प्रत्येक गांव में खेल मैदान, प्रशिक्षक, खेल सामग्री और नियमित प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जाए तथा लड़के और लड़कियों को समान अवसर दिए जाएं, तो ग्रामीण युवा देश के विकास में और अधिक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। इसलिए खेलों को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण का माध्यम मानना चाहिए। मजबूत और स्वस्थ ग्रामीण युवा ही मजबूत भारत की नींव रख सकते हैं। वस्तुतः खेलों के पीछे निहित भावना अत्यंत व्यापक और महान है। खेल स्वयं की शक्ति का प्रतीक ही नहीं अपितु राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक भी होते हैं।
1: कुसुम बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये वार्ता का विषय है। विषय था खेलों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं का विकास, और जानकारी दे रहे थे शंभुनाथ पांडे जो कि खेल पत्रकार हैं। और इन्होंने कितने अच्छे से बताया कि देखिए खेलों के माध्यम से हमारे युवा बहुत कुछ पा सकते हैं। देखिए सबसे पहले उनके शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है, अनुशासन और नेतृत्व हो सकता है, टीम भावनाएं भी हो सकती हैं, और इसके जरिए रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं और सामाजिक विकास भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं खेलों के माध्यम से पा सकते हैं।
2: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, और आजकल तो युवा आजकल खेलों में ज़्यादा रुचि भी रख रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अब हम बात करते हैं, देखिए आज 9 सितंबर है और आपको पता है लोकेंद्र भाई, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती आज ही मनाई जाती है। और इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य और नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने आधुनिक हिंदी भाषा और खड़ी बोली को स्थापित करने में ऐतिहासिक कार्य किया।
1: और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, पत्रकारिता और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर को उनके नाम से भारतेंदु युग कहा जाता है। और अगली मैं आगे बता दूं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जिसमें से महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद और नील देवी शामिल हैं। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक कुर्तियों, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार के मुद्दों को प्रमुख उठाया।
2: बिल्कुल, उन्होंने काफी साहित्यिक योगदान दिया। और उनका जो प्रसिद्ध पंक्ति जानते हैं लोकेंद्र भाई क्या है? उनका ये संदेश आज भी बहुत प्रसिद्ध है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिए को शूल। उन्होंने इतनी सारी साहित्यिक योगदान दिया है, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में राष्ट्रीय जागरण और देश प्रेम की भावना को सशक्त किया है।
1: बिल्कुल, और बातचीत और भी करेंगे तो अपने भाइयों को सुनवाते हैं अगली रागनी। कलाकार हैं योगेश कुमार व साथी और किस्सा है रामायण से।

उपेंद्र भाई, हमें अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे योगेश कुमार और साथी से रामायण पर आधारित ये रागनी। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डीजी फिनिक्स, पायोनिक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

0: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने दो और लोगों को जबरन गायब कर दिया है। इससे बलूच लोगों के गायब होने और प्रभावित परिवारों को जानकारी न मिलने को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। और अब समय हो गया है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम,
1: राम। कुसुम बहन कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और आज के हमारे कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और साथ साथ मनोरंजन भी होगा।
0: जी बिल्कुल, और बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम समय समय पर बताते रहते हैं लोकेंद्र भाई। एक ऐसी ही योजना है संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना, किसानों को सस्ते कृषि ऋण उपलब्ध कराने की एक केंद्र सरकार की ये योजना है। इसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अल्पकालिक फसल ऋण बहुत कम ब्याज दर पर दिए जाते हैं।
1: बिल्कुल कुसुम बहन, और इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत 3 लाख तक के अल्पकालिक ऋण पर ब्याज सहायता का प्रावधान भी है और इसके साथ साथ ऋण की सामान्य रीति ब्याज 7% है। सरकार पात्र ऋणदात्री संस्थाओं को 1.5% की ब्याज सहायता प्रदान करती है।
0: बिल्कुल, और अब हम बता दें कि कौन कौन हो सकता है इसका पात्र, इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र वही लोग हो सकते हैं, जैसे जो भी सभी व्यक्ति संयुक्त किसान जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं, पट्टेदार और बटाईदार किसान जो दूसरों की जमीनों पर खेती करते हैं, स्वयं सहायता समूह, किसानों के समूह या संयुक्त सेवा वाले समूह, पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन करने वाले किसान भी इसके पात्र हैं।
1: बिल्कुल कुसुम बहन, और देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, साहूकारों पर निर्भरता कम करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और इसके साथ साथ छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
0: बिल्कुल, और इसके लिए प्रक्रिया ये होगी कि कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आप अपनी नज़दीकी वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक में जा सकते हैं, दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड जो होता है, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होती है, और ये सभी आप जमा करवा सकते हैं और आप इसके पात्र बन सकते हैं। तो ये तो हुई संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के बारे में। तो अब हम चलते हैं, आपको बातचीत सुनवाते हैं आपको कृषि समाचार दर्शन, इसके अंतर्गत आपको सुनवाते हैं सुगंधित फसलों का खेती और प्रसंस्करण। किसानों से बातचीत कर रही हैं संध्या गुप्ता।
1: देखिए उन्होंने अनुभवी किसानों से बातचीत की है, वो अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, तो आइए सुनते हैं उनके अनुभव।
0: जी
2: नमस्कार, मैं संध्या कृषि समाचार दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में सुगंधित फसलों की खेती और प्रसंस्करण करने वाले किसान अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
3: हमारा नाम राम परवेश वर्मा, ब्लॉक हमारा मसौली, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। खेती से तो हम बचपन से जुड़े हैं, हमारे मेहनत तो हमारे बचपन से हो रहा है। 1 से 1.5 हेक्टेयर में हम लोग कर रहे हैं।

0: बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त था इसके लिए, और समय मार्च महीना पहला हफ्ता या फरवरी का दूसरा सप्ताह, जिस हिसाब से नर्सरी तैयार हो जाए, एक आध हफ्ता 10 दिन के लिए तो खैर कोई बात नहीं है, 15 मार्च तक तो हर हालत में लग जाना। ज्यादातर देहाती भाषा में पिपरमिंट कहते हैं। खेत बराबर करके, पाटा करके, क्यारी बना के, क्यारी पे, अब तो इस समय हमारे यहाँ करीब करीब 5-6 साल से सब नाली पे लग रही है, और नाली बना के उसी नाली के ऊपर लगता है। नाली
1: जी
0: वाले में खर्चा कम आता है, खाद का, पानी का थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि सारी अच्छी मिट्टी उमेड़ में आ जाती है, उमेड़ में पौधा लगता है। मान लो अगर बारिश हो गई तो पानी भरने की समस्या, उसमें पेड़ जो है रुकता नहीं है, जड़ लगती है, जड़ की नर्सरी बनती है। अब इस समय जो है नर्सरी के लिए, जड़ के लिए पौधा लग रहा है, बारिश में लग चुका है, वो जड़ तैयार हो जाएगी वही फरवरी में। उसके बाद उसको महीन काट के, एक एक इंच का, 1 से 1.5 महीने का समय लगता है नर्सरी में। पौधा 5 से 6 इंच पे पौधा, हमारे यहाँ तो 18 इंच पे लाइन, 18 से 20, कुछ लोग 15 पे लगा दे रहे हैं। तो 1 बीघे में निकल रहा है हेक्टेयर में, मान के चलिए 150 केजी कम से कम। मेन चीज इसमें है ये जो कीड़ा लग रहा है ना, सुंडी, उसकी दवा 15 से 20 दिन में हर हालत में पड़नी चाहिए, पौधा लगने के 15-20 दिन से बाद से। सिंचाई तो मौसम के ऊपर है, 8 से 10 दिन, इसमें कोई निराई का विशेष महत्व तो नहीं है, फिलहाल दवा से काम चल जाता है, क्योंकि नाली पे लगती है तो उसमें गुड़ाई का कोई मतलब नहीं, एक निराई या मान लो कोई किसान दो कर रहा है। इसकी कटाई मान के चलिए 90 से 92-95 दिन पे होती है, बाकी तो सब छोटे छोटे किसान प्लांट अपना खुद का लगाए हैं ज्यादातर, मान लो जिसके 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर है वो अपना खुद का प्लांट लगा लेते हैं, कोई विशेष खर्चा नहीं प्लांट में, 1.25 लाख रुपए में प्लांट लग जाता है, करीब करीब 5-6 साल वो चलेगा। तो इस समय तो 1350 रुपए केजी का बिक रहा है, ज्यादातर दवा में इस्तेमाल होता है। आप मान लीजिए कि एकड़ का 40,000 के आसपास खर्चा, अब उसमें ये मान के चलिए कि एकड़ में 60 केजी 65 केजी इससे कम नहीं होता है, वो तो बारिश हो जाए तो बात अलग है, या कोई दैविक आपदा आ जाए तो फिर बहुत कम हो या ना निकले। हाँ सुगंधित तो है, महक तो बहुत ज्यादा है इसमें।
1: नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी त्यागी है। मैं रहने वाला जिला बुलंदशहर खुड़जा, मेरा गांव का नाम ग्राम गवाह है और मैं सुगंधीय पौधों की खेती करता हूँ। जो मैं खेती करता हूँ, मेरी पिपरमेंट की खेती हरदोई में है और बाकी मेरी लेमन ग्रास की खेती मेरे गाँव में ही है और जो स्पेयरमेंट है वो भी मेरे गाँव में ही है। स्पेयरमेंट पुदीना, पहाड़ी पुदीना हो जाता है, पहाड़ी पुदीना होता है। ये जो फरवरी से मार्च के महीने में बोया जाता है। बूढ़ा मिट्टी होती है जो पानी में जल्दी सूख लेती है, उस मिट्टी में बोया जाता है। समय जो इसका होता है वो फरवरी मार्च में होता है। फरवरी मार्च में इसकी रुपाई की जाती है। रुपाई जो करते हैं, तो जड़ों से तोड़ के जो खेत करते हैं, जड़ों से उसको तोड़ते हैं और उसको खेत में गाड़ते हैं। आधे से 1 फुट की दूरी पर इसको लगाते हैं। गहराई इसका 2 इंच होता है। जब ये क्रॉप हो जाती है तो इसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है। इसकी पत्तियों को तोड़ने के बाद स्टीम डी इंस्टॉलेशन होती है भाप आसमान से। उसके भाप आसमान से ही इसेंशियल ऑयल निकलता है। अगर मैं आपको 1 एकड़ का मोटा मोटा हिसाब बता दूं तो ये कम से कम 10 से 15 टन एक एकड़ में हो सकती है। ये खेत की तैयारी होती है 3 से 5 हजार में हो जाती है। सामग्री इसकी 6 हजार तक आ जाती है। खाद को लगाएं तो 5 हजार तक का खाद हो जाता है। सिंचाई हो जाती है 6 हजार की साल की। अगर निगरानी के लिए इसके मजदूर को आपको छोड़ना ही पड़ेगा निगरानी के लिए, वो भी 4-5 हजार का आ जाता है। कटाई और धुलाई 5 हजार, टोटल जो ना 32 हजार प्रति एकड़ हो जाता है। किसान को लाभ इसका, मैम लाभ इसका जो ना, इसकी एक जो क्रॉप होती है, एक क्रॉप से 1 एकड़ में 15 टन आराम से निकल जाता है। जैसे इसकी खेती वर्ष में एक ही बार मिलती है, सीजन के हिसाब से इसकी खेती होती है। मैम भी 4 से 5 महीने की हो जाती है। इसकी जड़ें अलग हो जाती हैं। इसकी जड़ों को जो ना टाइम लगता है फैलने में। फिर मैंने पौधे नर्सरी से खरीदे थे और ये 4 महीने पूरी खेती तैयार हो जाती है। ये थोड़ा इसेंशियल ऑयल वाला पौधा हो जाता है। बहुत आसान खेती है, बस इसमें चुनौतियां क्या है, एक तो कीड़ा नहीं लगना चाहिए और ऊपर से जो जंगली जानवर है वो नहीं आने चाहिए। बस तो हमने जो ना बाउंड्री कर रखी है क्योंकि जंगली जानवरों का काफी नुकसान हो जाता है। अब पानी लिमिट से लगना चाहिए। मार्केट में इसका अलग अलग रेट है, वेराइटी के ऊपर है। तो 1200 रुपये किलो से ये स्टार्ट हो जाता है। एमडी इंस्टॉलेशन यूनिट है हमारी, उसको हम उसकी पत्तियां लेते हैं, चैम्बर में उसको डाल देते हैं। नीचे से हल्की भाप से, मतलब आग लगा के हल्की हल्की भाप से

0: जो भाप ऊपर आता है उसी से वो ऑयल निकलता है। हम मैन्युफैक्चर हैं एसेंशियल ऑयल के, अरोमाथेरेपी, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्ड ऑयल के, श्री यमुना एसेंस प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद। कुछ हमारे क्लाइंट है तो उनको अभी रिक्वायरमेंट पड़ रही है एक्सपेरिमेंट की, तो मैंने यही चीज देखते हुए एक्सपेरिमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है उनको, तो मैंने सोचा मतलब इसका भी मैं खुद करूँ, क्योंकि मैं पिपरमेंट भी अभी खुद करता हूँ, लेमन ग्रास भी मैंने इसी साल चालू कराया अपना खुद का जी। मैं खेती भी करता हूँ, मैं मार्केटिंग भी करता हूँ और मैं खुद का बिजनेस भी देखता हूँ।
1: नमस्कार, मैं नागनाथ भगवंत पाटील, हेड पोस्ट लिंबावाड़ी, तालुका साकोर, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। मैंने 2018 से एरोमेटिक में काम कर रहा हूँ। थोड़े जमीन पर पहले जेरेनियम लगाया था, अभी लगभग मेरा 8 एकड़ जेरेनियम है। 2020 में खुद का डिस्टिलेशन यूनिट लगवाया। अच्छा एक्सपीरियंस 2020 से है। तभी लगभग जेरेनियम का रेट 12,500 पर केजी था। जेरेनियम उसका जो ऑयल है वो इसेंशियल ऑयल है। जेरेनियम में मेजर दो वैरायटी है, एक चाइनीज रोज वैरायटी है और दूसरी है इजिप्शियन वैरायटी। इंडिया में जो है हम कर रहे हैं या ज्यादातर करते हैं वो चाइनीज रोज वैरायटी है। इसका पहले नर्सरी करना पड़ता है। नर्सरी के लिए 2,000 स्क्वेयर फुट की भी जगह हुई, उस पर हम नेट लगा के उसकी नर्सरी कर सकते हैं। जो नर्सरी है 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 हज़ार पौधे लगते हैं 1 एकड़ के लिए। मैंने जो खुद किया है वो पूरा ड्रिप इरिगेशन पे किया है। उसमें पहले सेंद्रिय खाद डालते हैं, बाद में उसके बेड तैयार करते हैं, बेड करने के बाद ड्रिप इरिगेशन करते हैं, सिस्टम लगवाते हैं, बाद में नर्सरी करके पौधे खेत में लगवाते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 हज़ार पौधे लगते हैं। बाद में फर्स्ट जो कटिंग आती है वो जेरेनियम की लगभग 4 से 5 महीने में आती है। उसमें थोड़ा बहुत हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। मेजर इसके लिए नाइट्रोजन की ज्यादातर मात्रा में जरूरत है, फॉस्फोरस की है और माइक्रोन्यूट्रेंट की है। इसका एनुअल कटिंग जो आता है लगभग 4 कटिंग आती है। मुझे जो आया वो 4 कटिंग आया। और अब हर मौसम में कम ज्यादा उसका ऑयल भी निकलता है। 4 कटिंग भी पकड़े तो 1 कटिंग का 5 टन भी ऑयल पकड़ा तो लगभग साल में 20 से 22 केजी ऑयल निकलता है। कभी कभी 1 टन पाला में 1 केजी से एवरेजली 1.5 केजी तक जाता है, लेकिन मिनिमम 1 केजी तो ऑयल निकलता ही है। आज लगभग उसका जो मार्केट रेट है, हमने जब शुरू किया था 2018 में तब 12,500 था, 2021 में भी 12,500 आया, 2022-23 में रेट थोड़े डाउन होने लगे, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया इंडिया में, तब से रेट थोड़े थोड़े कम होते गए और रेट 8,000 तक गए। फिर भी हमने एक खेत का नाम नहीं बंद किया। बाद में वो रेट बढ़ते गए बढ़ते गए। आज जेरेनियम ऑयल का रेट लगभग 17,000 रुपये पर केजी है। अभी देखो हमारी खेती का 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए एनुअली हमको प्रॉफिट हो रहा है जेरेनियम ऑयल में। और इसके साथ साथ हम दूसरी भी करती है खेती करते हैं, चिया सीड्स है, एरोमेटिक में तुलसी करते हैं, लेमन ग्रास करते हैं, पाम रोजा करते हैं। और एवरेजली पकड़े तो जेरेनियम का खेती हमें प्रॉफिटली लगता है। देखो जेरेनियम के जैसा ही पाम रोजा का है। पाम रोजा का बोले तो जेरेनियम में एक प्रॉब्लम दिक्कत है, जेरेनियम में एक दिक्कत है, अगर ज्यादा बारिश हुई तो इसके भी ऊपर फंगल अटैक होता है। लेकिन पाम रोजा है, पाम रोजा के ऊपर फंगल अटैक का हमें अब तक कोई डिसीज नहीं दिखी। नहीं, पाम रोजा के ऊपर बीज आते हैं, वो बीज आने के बाद कुछ लोग डायरेक्ट वो खेती में बुवा देते हैं। हमने क्या किया, वो नर्सरी तैयार किया, नर्सरी तैयार करने के बाद वो खेत में लगाया और एवरेजली वो भी पकड़े तो 2 महीने में कटिंग आती है पाम रोजा की भी। और मार्केट रेट पकड़ा तो पाम रोजा का भी 4,000 रुपये लीटर केजी रेट है उसका। और 1 एकड़ में लगभग 40 से 50 केजी ऑयल वो भी निकलता है। हमें तो 40 केजी अब तक तो निकला है। ये है कि फंगिसाइड या कोई अटैक के कोई चांसेस नहीं है पाम रोजा में। जैसे जेरेनियम में मेजर है, ज्यादा बारिश हुई तो फंगल आना ही आना है 100%, ये दिक्कत है। ये पाम रोजा में हमें दिक्कत नहीं मिली। तुलसी का हमने ट्रायल बेसिस भी किया, अभी तीसरा सीजन है तुलसी का हमारा। करते हैं 1 एकड़ में लगभग 200 या 300 ग्राम बीज लगता है उसका। नर्सरी तैयार करते हैं ओपन पे, नर्सरी तैयार करने के बाद हम खेत में लगाते हैं। हम एक ही कटिंग करते हैं, 4 महीने में कटिंग आती है उसका। 35 से 40 केजी ऑयल निकलता है उसका। 2,000 रुपये केजी का रेट है, लेकिन खर्चा लगभग नहीं के बराबर है तुलसी का।
2: मैं बंसराज कुमार, ग्राम दुधार, पोस्ट सुंदरगंज, जिला औरंगाबाद, बिहार से हूँ। मैं लेमन ग्रास की खेती पिछले 15 वर्षों से कर रहा हूँ।

0: लेमन ग्रास एक बहुवर्षीय पौधा है जो एक बार लगाने के बाद 4-5 सालों तक चलता है और हर 3 महीने पर उसकी कटिंग होती है और उसका तेल निकाला जाता है। एक कटिंग में 1 बीघे में 20 केजी तेल आता है। मार्केट वैल्यू देखें 1200 से 1500 रुपये केजी रेट रहता है। ये खेती बहुत आसान है और सिंचित क्षेत्रों में 4 बार उसकी कटिंग हो जाती है और असिंचित क्षेत्रों में कम से कम 2 बार कटिंग होती है। ऑयल भी निकाल सकते हैं और आप हर्बल भी बेच सकते हैं जो आसानी से अभी मार्केट में उपलब्ध है। लेमन ग्रास की कई वेराइटियां हैं जो समय समय पर रिसर्च होकर के आती हैं। आम हमारे सीमेप की वेराइटी एक कृष्णा वेराइटी है जो कुछ दिनों तक ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन अभी जोरहाट ICMR की एलेट वेराइटी है वो भी ज्यादा प्रचलित धीरे धीरे हो रही है। नया रिसर्च है वो। किसान भाई अगर लेमन ग्रास की खेती करते हैं असिंचित क्षेत्रों में भी तो उनको अच्छा मुनाफा होता है। कोई जानवर इसे बर्बाद नहीं करता, इसलिए ये सब तरफ से सुरक्षित खेती है। हमारे पास 2 एकड़ की खेती है, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। एक हफ्ता तक पानी में भी डूबा रहे तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, उससे ज्यादा होने पर नुकसान हो सकता है। इसमें स्लिप के द्वारा लगाया जाता है। जैसे एक पौधा लगाते हैं तो एक पौधे से लगभग 50-60-100 स्लिप बन जाते हैं। उसी स्लिप को निकाल करके फिर आगे आप उसको लगा सकते हैं। ये 2.5 फीट से 3-3.5 फीट तक ऊंचाई पहुंचती है और इसका जब हम लोग कटिंग करते हैं लगभग 6 इंच छोड़ करके इसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और उससे वायल निकालते हैं। तेल निकालने के लिए 12 से 24 घंटा के अंदर आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। चाय में अगर बनाना है तो उसको कटिंग करके पत्ते को और छाया में सुखा करके छोटा छोटा पीस करके आप उसको हर्बल टी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और अभी प्रगति मैदान में जो 9th इंटरनेशनल जो एक्सपो है तो उसमें हमारा स्टॉल लगा था, इसमें जनता ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उसमें लेमन ग्रास की खेती में स्लिप लगाने में ही शुरू में थोड़ा खर्च होता है, 4 सालों तक बहुत ज्यादा उसमें देख रेख नहीं रहता है, केवल उसको समय से सिंचाई कर देना पर्याप्त होता है। बहुत ज्यादा तो महंगा नहीं पड़ता है, 1 हेक्टेयर में 55,000 पौधे लगते हैं। जिस पौधे का कॉस्ट करीब करीब 1 से 2 रुपये पौधा पड़ता है। तेल निकालने के लिए मशीन जो है कई एक प्रकार का बाजार में है, जिसमें SS का भी है और लोहे का भी है। 3 से 4 लाख रुपया वो मशीन का पड़ता है जो किसान अपना लगा करके और उससे तेल निकाल सकते हैं। इसकी काफी संभावनाएं हैं मार्केट में। हर्बल टी के रूप में आजकल सभी कोई उसको स्वास्थ्यवर्धक के रूप में पीना चाह रहे हैं, तो इसका डिमांड काफी जोरों से चल रहा है बाजार में। अभी ऑनलाइन भी मार्केटिंग चल रही है, अच्छा रिजल्ट है उसका हर्बल टी के रूप में।
1: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: कुसुम बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत सुगंधित फसलों की खेती और प्रसंस्करण, किसानों से बातचीत की और उन संध्या गुप्ता ने, और उन्होंने अपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया।
3: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बहुत ही हमारा जो कार्यक्रम है ध्यान से सुनते हैं, और जितनी जानकारी हम बताते हैं वो भी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। और ये शाम का वक्त है और इस समय हमें भी चाहिए कि थोड़ा सा मनोरंजन करा दें, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जानकारियों के बाद कुछ मनोरंजन होना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: तो आइए हम सुनवाते हैं उनको, एक उपदेश कलाकार हैं ब्रजेश।
2: तो आइए सुनते हैं ये उपदेश।

0: तो अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये उपदेश कलाकार थे ब्रजेश।
1: जी लोकेंद्र भाई। और देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय बारिश के जो मौसम में नमी और कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में पशुओं की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उनको
0: बिल्कुल।
1: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो किस तरह से पशुओं का हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए, पशुशाला जो होती है वहाँ को सूखा रखें, बाड़े या शेड में पानी ना भरने दें और उसे हमेशा सूखा और हवादार बनाए रखें। निकासी की व्यवस्था रखें, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों को दुरुस्त करते रहना चाहिए और कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर और जो जो भी कीटनाशक कीट पतंगे
0: दवा।
1: होते हैं।
0: हाँ।

0: उनको उनसे बचाव हो सके और फिनाइल या उचित कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कुसुम बहन, और इसके साथ साथ हम अपने भाइयों को ये भी बताते चलें कि टीकाकरण और कृमिनाशक दवा का जरूर करें, क्योंकि पशु चिकित्सक की सलाह पर उनके अनुसार समय पर टीकाकरण और कृमिनाशक उपचार कराएं, और इसके साथ साथ कई संक्रमण और परजीवी रोग जो होते हैं उनसे भी बचाव हो सकता है, और इसके साथ साथ मच्छर मक्खी

0: और लोकेंद्र भाई, एक जब आहार की बात आती है तो उसको भी संतुलित रखना चाहिए। हरे और सूखे चारे का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए ताकि पशुओं को दस्त और अफरा जैसी शिकायत ना हो। और इसके अलावा सुबह की जो गीली घास होती है उससे बचना चाहिए, और क्योंकि उनके बीमार रहने का खतरा हो जाता है। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो बरसात के मौसम में भी अपने पशुओं की उचित देखभाल कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और चलते चलते अपने भाइयों को सुनवाते हैं ये भजन, कलाकार हैं जगदीश नागर।

0: अभी आप सुन रहे थे भजन कलाकार थे जगदीश नागर।
1: और इसी के साथ आज हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स, और स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है 7:35। और आइए सुनते हैं, ये कार्यक्रम है कवल और कवाली और गज़ल का। तो लीजिए सुनिए सबसे पहली पेशकश आपके समक्ष।

0: तो साथियों, अभी आपने ज़फ़र ख़ान बदायूनी और साथियों की आवाज़ में सुनी ये कव्वाली, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की। राजधानी में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों का विकास शिखर सम्मेलन आयोजित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। वहीं दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने भी राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसका उद्देश्य असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकना है। संवाददाताओं से बातचीत में एमसीडी साउथ जोन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि इसके लिए पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिल्डिंग का निरीक्षण करें और उनकी स्थिति का आकलन करें।
2: मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दे दिए हैं सभी बिल्डिंगों की, सभी मालिकों से भी निवेदन किया है कि आप भी सब बताएं और सारे अधिकारी जा के इसको देखें कि कौन सी बिल्डिंग कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी नहीं है, और जो अगर मरम्मत से ठीक हो सकती है तो उसे मरम्मत करवाएंगे, मरम्मत से ठीक नहीं होगी तो उसे डिमोलिशन करवाएंगे।
1: राजधानी में आज ब्रिक्स देशों के व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों के विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, इनोवेटर्स और उद्यमियों को एक साथ लाया गया। इसके अलावा सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक मजबूती को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच शुक्रवार से आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास जारी है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 7 बजे से शुरू हो गई है और रात 10 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया गया है और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा, सरदार पटेल मार्ग और मथुरा रोड सहित कई प्रमुख मार्ग परिवर्तित रहेंगे। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवा का उपयोग करने और वाहन चालकों से निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करने तथा मौके पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यात्री यातायात पुलिस की आधिकारिक पोर्टल पर मार्गों की जानकारी भी देख सकते हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: वहीं दिल्ली नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी द्वारा राजधानी में आयोजित होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर अपने हरित क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, सुधार और रखरखाव के लिए एक व्यापक योजना लागू करते हुए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में एनडीएमसी द्वारा हरित सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत क्षेत्र में व्यापक बागवानी और लैंडस्केपिंग कार्य किए जा रहे हैं। एनडीएमसी द्वारा 15 प्रमुख स्थानों पर पुष्प बोर्ड स्थापित किए जाएंगे, जबकि 9 प्रमुख स्थानों पर पुष्प फव्वारे लगाए जाएंगे। साथ ही एनडीएमसी की नर्सरी में तैयार किए गए 15,000 से अधिक गमलेदार पौधों

0: प्रमुख सड़कों, चौराहों, गोल चक्करों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। एनडीएमसी ने चाणक्यपुरी स्थित ब्रिक्स फ्रेंडशिप रोज गार्डन में बागवानी और सौंदर्यीकरण कार्यों को भी तेज कर दिया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप कुमार के साथ आज ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर राजधानी के प्रमुख स्थानों का विस्तृत संयुक्त निरीक्षण किया। इसकी शुरुआत ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन स्थल और भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्रों से की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला, उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने आज छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एन सरवाना कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल ने डीडीए को निर्देश दिया कि वे पीजी के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान करने का काम तेजी से करें, साथ ही एक ठोस योजना बनाने और हॉस्टल सुविधाएं विकसित करने के लिए नए मास्टर प्लान के प्रावधानों पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बातचीत करें। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में छात्रों को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास मिले। उपराज्यपाल आज एक निजी मीडिया समूह के वरिष्ठ नागरिक क्लब द्वारा आयोजित मेगा हेल्थ और सेवा कैंप में शामिल हुए। ये कार्यक्रम देश के प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदी समाचार समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण के 45वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि एक प्रगतिशील समाज अपने युवाओं की ऊर्जा को बुजुर्गों के अनुभव और समझदारी के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का सीनियर सिटीजन ऐप और नियमित संपर्क जैसी पहल उनकी सुरक्षा और भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज होलंबी कला वार्ड नंबर 3 का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण कार्यक्रम दिल्ली को कूड़े से आजादी मुहिम के अंतर्गत चलाया गया। इस दौरान श्री यादव ने मेट्रो विहार होलंबी कला में अतिक्रमण हटाने और नालियों की सफाई कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्री यादव ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण किया और उपस्थित नागरिकों तथा कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।

0: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रोफेसरों, छात्र प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान छात्रों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ वायु को बढ़ावा देना शीर्षक से अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें क्षेत्र की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए विचारपूर्ण सुझाव और व्यवहारिक समाधान साझा किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि उन्होंने वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन, बायोमास जलाने, नदी पुनर्जीवन, बेहतर तकनीक और नवाचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिरसा ने कहा कि युवाओं को इस मिशन में सच्चे साझेदारी के रूप में आगे बढ़ते देखना अद्भुत रहा। पर्यावरण मंत्री ने छात्रों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते रहने, नए क्षितिजों की खोज करने और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आयोजित स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार विद्यार्थियों के लिए पीजी सुविधाओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में मजबूत नियामक व्यवस्था पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नए दाखिला वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉ. महेश वर्मा ने राजधानी में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच को और व्यापक बनाना है। स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन नए दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, शोध, नवाचार, छात्र कल्याण और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित कराने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ये अत्यंत उत्साहजनक है कि आज की युवा पीढ़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नजदीक से जानने और समझने में विशेष रुचि ले रही है। उन्होंने कहा कि जेन जी भारत की जागरूक, जिज्ञासु और ऊर्जावान पीढ़ी है तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग PWD के 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कैडर CPWD से अलग कर स्वतंत्र दिल्ली PWD इंजीनियरिंग कैडर के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव 30 वर्षों से लंबित रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय राजधानी को तेजी से विकसित, सुरक्षित और विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के एस्केप ड्रेन 1, बिहारीपुर ड्रेन, बंड ड्रेन और गोकलपुर ड्रेन सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव से निपटने के लिए ड्रेन की सफाई तथा पंपिंग व्यवस्था मजबूत करने और इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की। राजधानी में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों का विकास शिखर सम्मेलन आयोजित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रतिनिधिमंडल

0: जल और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। और अब स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 8 बज चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम गीत मालिका का। तो श्रोताओं, गीत मालिका कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ प्रीति। और ये जो कार्यक्रम है जहाँ सिर्फ गीत सुनाई नहीं देते बल्कि दिल के किसी कोने में उतरकर पुरानी यादों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी जब आप कोई गीत सुनते हैं तो आपको याद आती है आपकी पहली मोहब्बत या कभी दोस्तों के साथ बिताए वो बेफिक्र दिन। और या कभी कभी किसी गीत के बोल बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाते हैं। तो सुनते हैं सबसे पहला ये गीत जो अपनी ज़ुबान में बहुत सारी मोहब्बत लेकर आपके सामने है।

तो साथियों, अभी जो आपने गीत सुना वो फिल्म गदर 2 से था और इसके गायक विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर रहे। तो कुछ गीतों की खासियत इतनी अलग होती है कि उन्हें सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया है, और यही संगीत की खूबसूरती भी होती है। जो बात हम शब्दों में नहीं कह पाते, उसे एक गीत हमारे लिए सब कुछ कह देता है। तो ऐसा ही एक गीत लेकर मैं हाजिर हूँ, फिल्म रॉकस्टार, और आवाज़ है AR रहमान और जावेद अली की।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका और मैं हूं आपके साथ प्रीति। और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इश्क, मोहब्बत और दोस्ती की। और फिर बात है कुछ ऐसे संगीत की जो आपको आपकी पुरानी यादों में लेके जाता है। और जहां बात पुरानी यादों की होती है, तो वहां कुछ खट्टे मीठे एहसास जो होते हैं वो ज़िंदगी के साथ जुड़े होते हैं। और उनमें एक एहसास है दोस्ती का। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे किसी नाम, उम्र या फिर किसी रिश्ते की मोहर की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि एक सच्चा दोस्त वो होता है जिसके सामने हमें खुद को साबित करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम वक्त के लिए आपके ज़िंदगी में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं, आपके साथ नहीं भी होते हैं, यानी उनकी जो यादें हैं वो उम्र भर आपके साथ रहती हैं। और क्योंकि अब दोस्ती की बात है तो कुछ चुलबुली बातें भी होती हैं, क्योंकि खट्टे मीठे एहसास शायद ऐसे ही मिलकर बनते हैं। तो हमारा जो गीत अगला है वो ऐसा ही एक एहसास लेकर आपके सामने है। फिल्म है दिल चाहता है और गायक शंकर महादेवन।

जी बिल्कुल, इस गीत ने जो कहा है हमसे कि जब हम नए हैं तो अंदाज क्यों पुराना हो, और सच में अंदाज तो कभी भी पुराना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है नयापन लाना, हर दिन कुछ नया सोचना और अपने आप को पिछले दिन से आगे बढ़ाना। तो शायद कहते हैं ना कि जो गीत होते हैं और उनके जो बोल होते हैं वो आपसे बहुत कुछ कह जाते हैं, फिर चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, इश्क हो, मोहब्बत हो। और रही बात जब प्यार के इजहार की, तो शब्दों से हो ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्यार में हो तो उसकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। और कभी खामोशी या कोई गीत जो आपकी भाषा बनकर सामने वाले को ये एहसास ज़रूर दिला देते हैं कि कुछ तो ख़ास है। और शायद मोहब्बत के गीत हमेशा से संगीत की दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहे हैं। तो इसी बात पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत, और फिल्म है तमाशा।

तो साथियों, कितनी ही प्यारी ये लाइन है कि अगर तुम साथ हो तो ये हो और ऐसा हो और वैसा हो, यानी कि जब आपके जज्बात बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरती के साथ जब सामने आते हैं तो वो कुछ अलग ही अंदाज में आते हैं। इस गीत में भी ऐसा ही कुछ था जिसे लिखा था इरशाद कामिल ने, और शब्दों में वो जादू होता है जो बहुत कुछ कह जाता है, और गाया भी अलका याग्निक ने इस अंदाज में कि हर शब्द का मतलब सामने ही रख दिया। ऐसा ही होता है, और ज़िंदगी में भी हमें ऐसा ही देखने और सुनने को मिलता है, जहां हम कई बार एक नई शुरुआत करते हैं खुद को फिर से खोजने की, और वहां वो साथ बहुत मायने रखता है जो आपके साथ होता है। ऐसा ही एक गाना है जो आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जहाँ दिल जो है ना उड़ने की ख्वाहिश रखता है, कभी मन दूसरी दुनिया में जाता है।

कार्यक्रम है गीत मालिका और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। और इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगला गीत जो सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म जब वी मेट और आवाज़ है मोहित चौहान की।

तो दोस्तों, हमारा कार्यक्रम गीत मालिका देखते ही देखते अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही गया है। और आज इस कार्यक्रम के बहाने, गीतों के बहाने, हमने प्यार और दोस्ती को महसूस किया, उन्हें याद किया, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा भी किया और ज़िंदगी को एक बार फिर से मुस्कुरा कर देखने की कोशिश की। तो कहते हैं ना कि गीत ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनका एहसास हमारे दिल में हमेशा बना रहता है। तो आइए चलते चलते कार्यक्रम में एक ये और गीत सुनते हैं, फिल्म ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से।

0: इसी गीत के साथ श्रोताओं, ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी

0: टैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो, तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है, तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े।

0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार देसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
3: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
2: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
2: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्सपर्ट @AIRNewsHindi.

0: को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
1: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
3: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth

0: करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे के 8 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दिफाई इश्तराक से मुतालिक मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। श्रीलंका ने यकीन दहानी कराई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन का कभी इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब पर यमन के हूसी बागियों के हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि इन हमलों से आबनाए बाबुल मंदेब में आजादाना जहाज रानी को खतरा लाहक होगा। भारत ने अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के अख्ताम तक कुल 15 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 4 तमगे शामिल हैं। और जूनियर एशिया कप हॉकी में मर्दों की भारतीय टीम चीनी ताइपे पर 15-0 से शानदार जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खवातीन की भारतीय टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कुल तखमीना लागत के रेलवे की वजारत के 8 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इत्तेलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए मरकजी काबीना की जानिब से किए गए फैसलों के बारे में मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने कहा कि काबीना ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों का अहाता करने वाले 5 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 540 किलोमीटर का इजाफा होगा। इन 5 प्रोजेक्टों की कुल तखमीना लागत 10,021 करोड़ रुपये से ज्यादा है और साल 2029-30 तक इनका काम मुकम्मल होने का इम्कान है। मंजूरशुदा तौसीई प्रोजेक्टों से तकरीबन 2,100 गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी मजमू आबादी तकरीबन 52 लाख है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने 10,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कुल तखमीना लागत के रेलवे के 3 तौसीई प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों का अहाता करेंगे और रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 656 किलोमीटर का इजाफा होगा। इन तौसीई प्रोजेक्टों से रेल खिदमत के मौसर होने और मसरूफ़ रास्तों पर भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर मौसूफ़ ने मज़ीद मुतल्ला किया कि हुकूमत ने ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले सभी 7 रेलवे कॉरिडोर्स को 4 लेन या उससे भी ज़्यादा करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर ये रूट रेलवे नेटवर्क के तकरीबन 11,000 किलोमीटर का अहाता करते हैं। नए मंजूर शुदा प्रोजेक्ट ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले रेलवे नेटवर्क पर सलाहियत को बढ़ाने और रेल खिदमात की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने की हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा हैं।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर एक सवाल के जवाब में इत्तेलात और नशरियात के वजीर ने इत्तला दी कि बुलेट ट्रेन खिदमात का आइंदा बरस आगाज होगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर पर तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और शुरुआत में गुजरात में सूरत से वापी तक 100 किलोमीटर के हिस्से पर खिदमात दस्तियाब होंगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के आज के फैसले मुसाफिरों की तेज़ नकल व हरकत, मुस्तहकम कनेक्टिविटी और इजाफी माल बरदार सलाहियत को यकीनी बनाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इससे खास तौर से विरासती मकामात और जंगलाती जिंदगी से मुतालिक सियाहत को फरोग हासिल होगा और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार दिस्सानायके से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखी शराकत दारी के वसी तर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान तरफैन ने खित्ते में सलामती, सिक्योरिटी, अमन खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करने के साथ साथ दोनों मुल्कों के तरक्याती कामों के सिलसिले में इश्तराक के अपने अहद का भी इरादा किया।
2: आज मेरी हेज एक्सलेंसी के प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है।

0: उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
1: दोनों मुल्कों ने श्रीलंका की फिजाइया के लिए L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दोनों मुल्कों की नेशनल कैडेट कोर और नेशनल डिफेंस कॉलेजों के दरमियान इश्तराक के सिलसिले में भी मफाहिमतनामों का तबादला किया। मीटिंग के दौरान सदर डिसनाइके ने यह बात दोहराई कि श्रीलंका कभी भी अपनी सरजमीन को ऐसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा जिनसे भारत के सिक्योरिटी मफादात को खतरा लाहक हो। जनाब राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के वजीर आजम हरिनी अमरासुरिया से भी मुलाकात की और भारत और श्रीलंका के दरमियान तरक्याती इश्तराक, तालीम और करीबी सकाफती और तहजीबी राबतों से मुतालिक मामलात पर नज़रियात का तबादला किया। नई दिल्ली में इस हफ्ते होने वाले ब्रिक्स लीडर्स समिट से पहले मुंबई में ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की आखिरी मीटिंग हो रही है। इस साल ब्रिक्स के मालियाती मामलों का मौजू है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारी की तामीर। इससे पहले गुज़श्ता महीने जयपुर में वज़राए खजाना और गवर्नरों की मुलाकात हुई थी। मुंबई में होने वाली आखिरी मीटिंग से पहले खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के कलीदी नतायज का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में थाईलैंड के नायब वजीर आजम और कॉमर्स के वजीर सुफाजी सुथुमपुम से मुलाकात की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा कि दोनों वजीरों ने भारत और थाईलैंड के दरमियान इकतसादी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जिसमें बाहमी तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा करने, कारोबारी इम्कानात में वसत पैदा करने और दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार से कारोबार के रबते मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने दो तरफा तिजारत के सिलसिले में मुतवाजन और पायदार तरक्की को फरोग देने की खातिर मजीद इश्तराक पर भी बातचीत की। भारत ने सऊदी खुद मुख्तार ज़मीन पर हूसी हमले की मजम्मत की है जिसमें शहरियों और इकतसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब में हमलों से मुतालिक पूछे गए मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि बाबुल मंदेब में इस तरह के हमले जिनसे इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम की पामाली होती है और जहाजरानी की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है पूरी तरह नाकाबिल कबूल हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े में उस वक्त अचानक तेज़ी आ गई जब दोनों फरीकों ने एक दूसरे के फौजी ठिकानों और तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। हालिया हमलों को तनाज़े की शुरुआत के बाद से तिजारती जहाज़ों पर अब तक के सबसे संगीन हमले करार दिया जा रहा है जिससे अहम बहरी रास्तों की सलामती और तवानाई की आलमी सप्लाई से मुतालिक ताज़ा खदशात पैदा हो गए हैं। मज़ीद तफसील हमारे मग़रिबी एशिया के नुमाइंदे से।
2: अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े में कल उस वक्त अचानक शिद्दत आ गई जब खलीज फारस में और उसके अतराफ़ फौजी ठिकानों और तजारती बहरे जहाज़ों को हमलों का निशाना बनाया गया। इन हमलों को तनाज़े की शुरुआत के बाद से इसलिए भी इंतहाई शदीद माना जा रहा है क्योंकि महज चंद घंटों में कई बहरे जहाज़ों पर सीधे हमले किए गए। अमरीका ने कहा है कि अमरीकी बहरिया के जहाज़ पर ईरान के मिज़ाइल हमलों के बाद उसने 5 ईरानी तेल टंकरों को तबाह कर दिया है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने आबनाए हुरमुज़ के अतराफ ममनुआ खित्ते के करीब अमरीकी बहरिया के 2 जहाज़ों और 8 तेल टंकरों पर हमले किए हैं। तजारती बहरे जहाज़ों और फ़ौज के दरमियान रबते के तौर पर काम करने वाली तंजीम UKMTO ने तस्दीक की है कि रात भर चली फ़ौजी कार्रवाई के दौरान कई तजारती बहरे जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इन वाकयात के सबब तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है और ब्रेंट खाम तेल $100 फी बैरल से तजावज कर गया है। वहीं WTI भी 95 अमरीकी डॉलर से ऊपर रहा जिससे इस बात पर तशवीश बढ़ गई है कि जहाज़रानी और तवानाई की फराहमी तवील अरसे तक महसूद रहने से आलमी मईशत पर मजीद दबाव पड़ सकता है। दुबई से मनीष शिवा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: थाईलैंड के दाखिले उमूर की वजारत ने कहा है कि आम पासपोर्ट रखने वाले भारतीय सयाह वीज़ा की ज़रूरियात से मुस्तस्ना रहेंगे और उन्हें थाईलैंड में क़याम की इजाज़त होगी लेकिन वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका इतलाक़ इस महीने की 15 तारीख से होगा। थाईलैंड में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि सयाहों के पास वहाँ आमद की तारीख से कम अज़ कम 6 महीने की मुद्दत तक का लाजमी तौर पर एक जायज़ पासपोर्ट होना चाहिए। उनके पास तस्दीक शुदा वापसी के टिकट, होटल की बुकिंग और वाज़े सफ़र के मंसूबे भी हों। उसने मजीद कहा कि सयाहों को इमिग्रेशन की सरकारी वेबसाइट के ज़रिए आमद से पहले 72 घंटों के अंदर अंदर थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड मुकम्मल करने की ज़रूरत होगी।

भारतीय महकमे मौसमियात ने कल ओडिशा में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अगले 2 से 3 दिन में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बलूचिस्तान में मजीद 2 अफराद पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी का शिकार हो गए हैं, जिसे बलूच अफराद की गुमशुदगी और मुतासर खानदानों को दस्तियाब मालूमात को लेकर तश्वीश एक बार फिर नुमाया हो गई है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक 23 अगस्त को रात तकरीबन 3 बजे पाकिस्तानी फोर्सेज ने मस्तूंग में अली बलोच को मुबैना तौर पर हिरासत में ले लिया। इसके बाद अली बलोच का कोई पता नहीं चल सका। एक दूसरे वाकये में शकील बलोच के अफराद खानदान ने कहा कि उसे क्वेटा के किल्ली गौहराबाद से 16 अप्रैल की आधी रात उसके मकान से उठा लिया गया। उसके कुंबे ने पाकिस्तानी ISI और इंसदाद दहशतगर्दी महकमे CTD पर उसकी गुमशुदगी का इल्जाम आयद किया है। भारत ने आज अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले में आखिरी दिन 2 सोने और 4 कांसे के तमगे जीतकर अपनी मुहिम खत्म कर दी। पैरालंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाले हरविंदर सिंह और मौजूदा आलमी चैंपियन और आलमी नंबर 1 शीतल देवी ने भारत के तमगों की मुहिम की क्यादत की। शीतल देवी ने खवातीन के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की आयजदा सैदान को एक सनसनीखेज शूट ऑफ में शिकस्त देकर यह तमगा हासिल किया है। हरविंदर सिंह ने भावना के साथ मिलकर रिकर्व मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन के लियांग क्विरोंग और जियाई ली को 6-0 से शिकस्त दी। भावना एक और कांस्य का तमगा भी जीती हैं। उन्होंने खवातीन के पैरा रिकर्व ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ में अपनी हरीफ राजश्री राठौड़ को 6-0 से शिकस्त दी है। उन्होंने मुकाबले में एक दूसरा मेडल भी हासिल किया है। उन्होंने इससे कबल कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में तोमन कुमार के साथ कांसे का तमगा जीता था। भारत की सरिता ने खवातीन पैरा कंपाउंड इनफरादी इवेंट में एक दूसरा कांसे का तमगा हासिल किया है। इस नतीजे के साथ अहमदाबाद में भारत की मुहिम का अख्तिताम मजबूत और शानदार अंदाज में हुआ है। मर्दों की भारतीय जूनियर हॉकी टीम चीन के शहर मोकी में जारी जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 5 मरतबा के चैंपियन भारत ने आज चीनी ताइपे को 15-0 से शिकस्त देकर पूल ए में पहली पोजीशन हासिल की है। भारत ने 3 कामयाबियों और 1 ड्रॉ के जरिए 10 पॉइंट हासिल किए हैं। कप्तान अनमोल एक्का मैच के हीरो रहे और उन्होंने 6 गोल किए और ये तमाम गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए गए। अरियान जेस ने हैट्रिक की जबकि हरपाल ने 2 गोल किए। प्रभदीप सिंह, गुरुसेवक सिंह, अर्जुन संतोष हरगुदे और अजीत यादव ने 1-1 गोल किया। भारतीय खवातीन की टीम ने अपने आखिरी इलीट पूल मैच में चीन के खिलाफ बगैर गोल के ड्रॉ खेला और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। भारतीय खवातीन की टीम अगले मरहले में पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने 9 रियासतों में कनेक्टिविटी को फरोग देने की खातिर 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे के 8 तौसी प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दिफाई इश्तराक से मुतालिक मफाहिमत नामों पर दस्तखत किए हैं। श्रीलंका ने यकीन दहानी कराई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन का कभी इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब पर यमन के हूसी बागियों के हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि इन हमलों से आबनाए बाबुल मंदेब में आजादाना जहाज रानी को खतरा लाहक होगा। भारत ने अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के अख्ताम तक कुल 15 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 4 तमगे शामिल हैं। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत की मर्दों की टीम चीनी ताइपे पर 15-0 से शानदार जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खवातीन की भारतीय टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

जलता है बदन। इन तरह निराला मंगेशकर दरफिल्म रजिए सुल्तान मिहानत।

0: ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं। मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते हैं।
1: तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICAR-ISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र से जुड़े लोग साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहु

0: आयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमेरिका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म ज़िनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमरीकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैर कानूनी मार्केटप्लेस को चलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे स्कैम सेंटर हर साल अमरीकी पीड़ितों से अरबों डॉलर की ठगी करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इन विदेशी आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों में एकजुट है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 km and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi, in a social media post, highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari yesterday inaugurated the 6-lane Parvari elevated corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said, where infrastructure is good, there is capital investment, and where there is capital investment, employment is created. He said several highway, bridge, flyover and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH66, NH748 and airport connectivity along with proposals to improve links between North and South Goa. The 5.15 km Parvari corridor built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to carry 75,000 to 80,000 vehicles a day and take around 60%

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, और लीजिए एक और खूबसूरत गीत आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। उनका नाम प्यार की दास्तान।

लीजिए जुमरू फिल्म का ये गीत आपके लिए, किशोर कुमार।

साथियों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में गीत। और लीजिए, अब आपके लिए ला रहे हैं माया फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: सदियों इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत सुनहरे यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाले बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व विकास सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास और अवसरों को बढ़ाने के लिए ऋण, बाजार और व्यापार के स्पष्ट नियमों तक आसानी पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ शिक्षा, कौशल और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से उन्हें देश के विकास का वाहक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने

की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में हॉर्मूज जल डमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। यह चेतावनी ईरान के तेल टैंकरों पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद से कार्रवाई करने की अपील की। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रहने दो ना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, बड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 166,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक की वापसी का भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पिछले 10 दिनों में देश में अलग अलग जगहों पर 6 बड़ी कार्रवाई की। इन छापेमारी में 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित इंडियन स्टार कछुए, 12 जिंदा टोके गेको, एक तरह की छिपकली, लगभग 24 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क और करीब 500 ग्राम बाघ की हड्डियां जब्त की गईं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन ऑपरेशनों के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DRI के अनुसार जब्त की गई ये अलग अलग चीजें संरक्षित वन्य जीवों की तस्करी को उजागर करती हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों

अभी ना जाओ के रात बाकी है। मीलू शर्मा की आवाज़ में आपने सुनी ये बेहद प्यारी गज़ल।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

और गजल गीत का कार्यक्रम मीलू शर्मा की इस गजल के साथ संपन्न होता है। श्रोताओं, प्रातः की 4 बजने को हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए आप सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे रघुरमन जी का बांसुरी वादन, राग मध्यमवती में। तो आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम बांसुरी वादन प्रस्तुति जी रघु रमन जी की।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:54 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हम इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हम इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे 5 बजे हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। पाँच बजकर 10 मिनट का समय रहेगा आओ योग करें कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे दीर्घ श्वास परीक्षा और आसन के बारे में। 5:20 पर देशभक्ति गीत आप सुन सकते हैं और स्वर रंजनी कार्यक्रम भारतीय सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप आज सुनेंगे उस्ताद अहमद रजा द्वारा प्रस्तुत राग आहिर तौड़ी। उनकी प्रस्तुति विचित्र वीणा स्वर में होगी। समय रहेगा 5:30। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी 6:00 हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 का समय अंग्रेजी समाचारों का है। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें आप सुनेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के विचारों पर चिंतन। 6:40 का समय रामचरितमानस से अयोध्या कांड भाग 44 का है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बिना नए प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा है कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में होर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह, बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से, जबकि चौथी सीड कोको गॉफ का सामना कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना से होगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला।

का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास।